मीडियोवेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो चुके हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हमारे श्रोता, बस कुछ ही पलों के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले हिंदी में समाचार सुन सकेंगे। प्रतीक्षा बस कुछ पलों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता

है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियावेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। तमाम सुनने वालों का हम इस सभा में स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ ही श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अर्चना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत। कीजिए स्वीकार हमारा शुभ वंदन और अभिनंदन। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी चंचल, कभी संघर्षों की चट्टानों से टकराता हुआ। लेकिन इस यात्रा में एक सहारा ऐसा भी है जो हर मोड़ पर हमारे साथ चलता है, और वो है विश्वास। जब रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं तब आस्था दिशा बन जाती है, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब प्रार्थनाएं बोलने लगती हैं, और जब मन संसार की भीड़ में स्वयं को अकेला महसूस करता है तब ईश्वर का स्मरण एक सच्चे साथी की तरह हाथ थाम लेता है, और तभी तो मनुष्य ईश्वर भक्ति का सहारा लेता है। आइए श्रोताओं, इस सुबह सुबह

कि जो ये आज का सुबह का वातावरण है, इस वातावरण को और भी ज्यादा सुंदर बनाए और सुने जगजीत सिंह का गाया ये भजन।

भक्ति किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है। ये वो दीप है जो आंधियों से लड़ना हमें सिखाती है, लेकिन ऐसा दीप जो आंधियों से लड़कर कभी बुझता नहीं है, बल्कि हमारे मन को एक नए उजाले के साथ निखारता है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल का गाया ये भजन।

मनुष्य के जीवन में अनेक पल ऐसे आते हैं जब वो उत्तर खोजता है अपने प्रश्नों के, अपने संघर्षों के, अपने अस्तित्व के, और अक्सर उन उत्तरों की यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर जाकर पूरी होती है। लेकिन वो तब जब वो अपनी आत्मा को खंगालता है, अपनी आत्मा से सवाल करता है और पूछता है कि उसको कहाँ सुकून है, और जब वो सुकून उसे ईश्वर को याद करके मिलता है तब उसका जीवन एक नई और अलग दिशा में निकल पड़ता है। आइए श्रोताओं सुनते हैं नरेंद्र चंचल की गाई ये भक्ति रचना।

जब रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं तब आस्था दिशा बन जाती है, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब प्रार्थनाएं बोलने लगती हैं, और जब मन संसार की भीड़ में स्वयं को अकेला महसूस करता है तब ईश्वर का स्मरण एक सच्चे साथी की तरह हाथ थाम लेता है। आइए श्रोताओ, अब भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का समापन करते हैं हरिओम शरण की गाय इस आरती से।

श्रोताओ, हरि ओम शरण की गाई इसी आरती के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त हो गया। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओ, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समाधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

0: श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी में प्रमुख स्वर थे रविंद्र साठे और साथियों की, और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के लिए संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओ, आप सुनते हैं आज का आबोहवा कार्यक्रम।
1: जैसे जैसे दुनिया में भौतिक विकास की गति तेजी से बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही प्रकृति भी अपने स्वरूप में परिवर्तन करते जा रही है। वर्तमान में मानव जाति द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिन्हें देखकर वे स्वयं भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मानव जाति द्वारा किए जा रहे प्रकृति प्रभावित नहीं हो रही है, उन कृत्यों के प्रतिफल में मानव जाति को सदा ही दुष्परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। मनुष्य भले ही भौतिक चकाचौंधी में आगे कदम बढ़ा रहा हो, किंतु उसके द्वारा कई कार्य अज्ञानतावश किए जा रहे हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी प्रकृति एवं वातावरण पर हो रहा है। आज का मानव ये चाह रहा है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक साधन एवं सुविधाओं पर उसी का साम्राज्य स्थापित रहे। इसी भागम भाग में वह स्वयं अपने को भी नहीं समझ पा रहा है और अपने पराये का ख्याल तो उसके मन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आज का मानव अपने स्वयं के जन्मदाताओं का दिन प्रतिदिन अपमान किए जा रहा है। उन्हें आज जब एक सहारे की आवश्यकता है, किंतु सहारा देने के बजाय प्रताड़ित किए जा रहा है, तो ये समझकर चलिए उसके द्वारा की जा रही ऐसी करनी का दुष्परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसे इस बात का एहसास अवश्य होगा और अंततः उसे पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ेगा। हमारे द्वारा किए गए कार्यकलापों पर प्रकोप का ज्वलंत उदाहरण वर्ष 2013 में उत्तराखंड के चार धाम तीर्थ क्षेत्र में हुई तबाही को हम भुला नहीं सकते हैं। प्रकृति ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अपने आंगन में नदी नाले सरोवर पहाड़ वनस्पति आदि का निर्माण किया है, जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा जन कल्याणार्थ किया जाना आवश्यक था, किंतु मनुष्य द्वारा उन सब का सदुपयोग के बजाय

0: उपयोग किया गया। आसमान में वायुयान, समुद्र में जलयान, स्थल में रेलें, मोटरें आदि के क्षेत्र में विज्ञान ने काफी तरक्की की है, किंतु यदि प्रकृति का तीसरा नेत्र पुनः खुल जावे तो होने वाली तबाही को मनुष्य द्वारा रोका जाना नामुमकिन होगा और प्रकृति प्रकोप से होने वाले दुष्परिणाम के प्रतिफल में मनुष्य के पास अलावा आंसू बहाने के और कुछ भी शेष नहीं बचेगा और उसे जीवन भर पछतावे की अग्नि में जलता रहना पड़ेगा। इसीलिए कहना पड़ेगा कि कुदरत ने बख्शी जो अमानत हमें, बचा लो ए मित्रों बर्बाद न करो, सीख मान लो अपने अदने से मित्र की, जान बूझ कर बे मौत न मरो, समझो न बड़ा कुदरत से अपने आप को, भौतिक चका चौंध का अरमान न करो, मिट जाएगा एक दिन जो पाया आपने, झूठी है शान शौकत कुछ शर्म भी करो, झूठी है शान शौकत कुछ शर्म भी करो।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे श्री हुकुम चंद जैन की वार्ता, भौतिक विकास और पर्यावरण कार्यक्रम था आबोहवा।

मीडिया वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और साथ ही FM 102.6 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण।

लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारी आज की इस सभा के खास खास कार्यक्रम, उनका संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय। हम अपने श्रोताओं को बताएं, रात्रि 11:10 से रात्रि 11:45 तक आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की कड़ी संख्या 12, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे। रात्रि 9:00 से 10:00 तक आप सुन सकेंगे SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने। हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में मैसेजेस के जरिए हमें अपनी पसंद भेजते हैं, अपने नाम भेजते हैं और फिर हम उनके नामों के साथ उनकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। तो सुनना ना भूलें हमारा ये कार्यक्रम रात्रि 9:00। चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:00 से 8:45 तक। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 7:30। शाम 7:00 का समय रहेगा चौपाल कार्यक्रम का। चौपाल कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसके अलावा डिजिटल युग में स्वस्थ नींद के लिए योग। हम अपने श्रोताओं को बताएं, आज के चौपाल कार्यक्रम को आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम के साथ और आज का विषय रहेगा खरीफ फसलों की उन्नत किस्में और उनकी विशेषता। स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे राजेश कुमार शर्मा। आप टेलीफोन कर सकेंगे सीधे राजेश कुमार शर्मा से, हमारे टेलीफोन नंबर 2941142 STD कोड 0744 लगाकर बात कर सकेंगे। शाम 6:00

कर 5 मिनट पर फिल्म संगीत का आनंद हमारी श्रोता ले सकेंगे। युवाणी आप सुनेंगे शाम 5 बजे से 6 बजे तक। आज का संवाद होगा कार्यस्थल पर सहयोग से बढ़ेगी कार्यक्षमता। प्रातः 9:30 पर महिला जगत कार्यक्रम होगा। आज चर्चा का विषय रहेगा बेटी की दोस्त बने, उसकी निजी समस्याओं को जाने। इसके अलावा किशोरी जी के साथ की गई एक भेंटवार्ता आप सुनेंगे, जिसका विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी जी। हमारे श्रोताओं को हम बताएं कि प्रातः 8:30 आप सुनेंगे सुगम संगीत और प्रातः 8:15 का समय रहेगा लोक संगीत का। फिल्म संगीत सुहाना सफर आप सुन सकेंगे 7:30। प्रातः 7:15 का समय रहेगा गांधी चर्चा का। नमस्कार कोटा कार्यक्रम हर रोज की तरह सुबह 7 बजे और आज चर्चा का विषय रहने वाला है पर्यावरण की सुरक्षा हमारा दायित्व। इसके अलावा बाल श्रम रोकने की भूमिका निभाएं। तो श्रोताओं ये थे हमारी आज की इस सभा के खास कार्यक्रम, उनका संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

0: कृषकाणां चलतुर भाषे प्रदातुम ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य सम्बद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयल तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामि क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतद् पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: मीडिया वेव 212.3 एक मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स और FM 102.6 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हम जानते हैं हमारे श्रोताओं को हो रहा है बेकरारी से इंतजार। जी हाँ, और वो इंतजार हो रहा है मनपसंद कार्यक्रम का। तो आपका इंतजार करते हैं समाप्त और लेकर हाजिर हैं हम आज का नमस्कार कोटा कार्यक्रम।

हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए और जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। और इसी सकारात्मक सोच और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप तमाम सुनने वालों का स्वागत। दिन की शुरुआत अगर उम्मीद से हो तो राहें आसान लगने लगती हैं। तो आइए आज की सुबह को कुछ अच्छे विचारों और मधुर गीतों ढेर सारे अपने पन के नाम करते हैं। सुबह का उजाला सिर्फ आसमान में नहीं फैलता, वो मन में उतरता है, बस जरूरत है उसे महसूस करने की। तो आइए महसूस करें और खूबसूरत सुबह का स्वागत करें। जिंदगी का हर दिन हमें एक नया अवसर तो देता ही है, जी हाँ, क्योंकि कुछ सीखने का, कुछ बांटने का और कुछ बेहतर बनाने का कोटा की गलियों से लेकर आपके दिलों तक सुबह की ताजगी और अपनेपन की खुशबू लेकर हम हाजिर हैं। और जब बात हो रही है कुछ नई उम्मीदों की, कुछ और ज्यादा अपने आप को निखारने की, बेहतर बनाने की और बीते

हुए कल को जब हमने हार दिया उसको उठकर फिर से लड़ने की, कि उस दिन से उठा जाए और फिर से लड़ा जाए। दोस्तों, हर शहर की एक धड़कन होती है और कोटा की धड़कन है यहाँ के लोग। तो आप सुन रहे हैं इस समय नमस्कार कोटा कार्यक्रम।

अगर सुबह की हवा शब्दों के साथ आपसे कुछ कह सकती तो शायद यही कहती कि थोड़ा मुस्कुराइए। जी हाँ, थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, बस बस बस यही वाला। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। जी हाँ श्रोताओ, हो चुका है प्रोग्राम नमस्कार कोटा का आगाज और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर तरन्नुम नाज। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, राम राम।

और श्रोताओ अब कर ली जाए आज के विचार की बात। तो आज का विचार कुछ यूं कहता है कि जीवन का उद्देश्य केवल और केवल आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि चलते चलते किसी और का रास्ता भी आसान बनाना है। किसी का बोझ उठाना संभव ना हो तो कम से कम उसके सफर को भारी तो मत बनाइए। अच्छे लोग चमत्कार नहीं करते, बस वो सही समय पर किसी का हाथ थाम लेते हैं। और श्रोताओं आप सुन रहे हैं ना मन लगाकर कान लगाकर आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल, और यहाँ से इस समय प्रसारित हो रहा नमस्कार कोटा कार्यक्रम, जिसे हो सकता है आप सुन रहे हो अपने रेडियो सेट पर या फिर अपने मोबाइल फोन में ऐप पर, और या फिर हो सकता है आप सुन रहे हो वो छोटू से वाले मोबाइल पर। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर से लौटते हैं आपके पास।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।

0: खुश से?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का स्वागत, और आपको तो पता है ना, आप सुन रहे हैं नमस्कार कोटा कार्यक्रम। और हाँ, अब कर ली जाए वो चर्चा जिसके बारे में कर रहे थे हम बात। और बात तो हम कर रहे थे कि किसी का रास्ता आसान बना देना चाहिए, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो एक विषय ये भी है, बाल श्रम रोकने की भूमिका को भला हम कैसे निभा सकते हैं।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में एक और चर्चा का विषय है, वो है पर्यावरण की सुरक्षा, हमारा दायित्व। जी हाँ, आज दायित्वों के बारे में बात हो रही है। तो क्या आप सोचते हैं कि धरती ने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं मांगा? मांगा हो तो बताइए, नहीं मांगा ना? तो जब प्यास लगी उसने हमें नदियाँ दे दी, जब भूख लगी उसने हमें खेत दे दिए, जब थक गए उसने पेड़ों की छाव दे दी, जब सांस लेने की बारी आई तो उसने बिना कोई बिल भेजे हवा दे दी। जी हाँ, लेकिन पहली बार लगता है कि धरती कुछ कहना चाह रही है। आप बस गौर से देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, वो कह रही है कि मैं थक रही हूँ। कटते जंगल, सिकुड़ती नदियाँ, बढ़ता तापमान, धुएं से घुटती हुई हवाएं, ये केवल पर्यावरण की खबरें नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के वो खत हैं, वो चिट्ठियां हैं जिन्हें हम पढ़ना ही नहीं चाहते। अजीब बात है, हम अपनी मोबाइल की बैटरी को 20% देखते ही चिंतित हो जाते हैं, लेकिन धरती के संसाधन 20% रह रहे और हमें सोचने की फुर्सत तक नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने क्या छोड़ा है, सवाल ये है कि हमने उनके लिए कुछ छोड़ा भी है या नहीं। पर्यावरण संरक्षण कोई अभियान नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक ऐसा निर्णय है जो हर सुबह हमारे घर से शुरू होता है, नल बंद करने से लेकर एक पौधा लगाने से, प्लास्टिक को मना करने से, ये समझने से कि प्रकृति हमारी संपत्ति नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। जब आखिरी पेड़ काटा जाएगा, आखिरी नदी सूख जाएगी, आखिरी सांस खरीदनी पड़ेगी, तब हमें समझ आएगा क्या कि विकास और विनाश के बीच की रेखा कितनी पतली थी। तो अब सोचना क्या है, ये सोचना है कि धरती को बचाने का वादा नहीं बल्कि किसी और से नहीं करना है, बल्कि उस वादे को खुद से करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। तो आप समझ रहे हैं ना पर्यावरण का महत्व और स्वयं की भूमिका।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: चक दे। और दोस्तों आपको ये तो बताइए कि गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। हवा है मगर उमस बहुत है। अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो थोड़ा सा आपको राहत महसूस होती है, घर के अंदर बेहद उमस है। और तापमान जो है वो अधिकतम कोटा शहर का रहा 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 30.6 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बता दिया जाए कि कल आपकी सुबह की शुरुआत होगी प्रातः 5:35 पर सूर्योदय के साथ और आज आपकी शाम यानी जो आपका आफ्ताब है, हम सब का आफ्ताब है, वो अपने आप को छुपा लेगा शाम 7:22 पर सूर्यास्त के साथ।

और श्रोताओ, अब आज इस कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्ति की ओर है। जी हाँ, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा परिवर्तन होता है अगले कार्यक्रम के लिए, तो आपसे इजाजत तो बिल्कुल लेनी है, लेकिन जाने से पहले

इतना जरूर कहना है कि यदि आप किसी के साथ दोस्ती रख रहे हैं, कोई रिश्ता रख रहे हैं, कोई बहुत अच्छा सा संबंध रख रहे हैं, तो उसकी गहराई को जरूर समझिए। आप इस बात को जरूर समझिए कि जब खुशी होती है ना आपकी जिंदगी में, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अपनी खुशी को बांट लेते हैं। बहुत सारे लोग भी होते हैं जो आपकी खुशी को भी बांटने आ जाते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जब आप

वी। और अब आपसे इजाजत ले ली जाए, जाने से पहले इतना जरूर, हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा, बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखिएगा, और हाँ पानी भरपूर पीते रहिएगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और हाँ दुआओं में जरूर याद रखना है मुझे भी और अपनों को भी। तो चलती हूँ, राम राम दुआ सलाम, रखना दुआओं में याद, नमस्कार कोटा।

नमस्कार कोटा कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं गांधी चर्चा कार्यक्रम।

श्रोताओं नमस्कार। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इससे विभिन्न प्रसंग आप सुन रहे हैं। आज का प्रसंग, लड़ाई के काम से मुक्त होने के बाद अनुभव किया कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में है। मैंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में बैठा बैठा मैं कुछ सेवा तो अवश्य कर सकूंगा, पर वहां मेरा मुख्य धंधा धन कमाना ही हो जाएगा। देश का मित्र वर्ग भी देश लौट आने के लिए बराबर आग्रह करता रहता था। मुझे भी लगा कि देश जाने से मेरा उपयोग अधिक हो सकेगा। नेटाल में मिस्टर खान और मनसुख लाल नाजिर थे ही। मैंने साथियों के सामने मुक्त होने की इच्छा प्रकट की। बड़ी कठिनाई से एक शर्त के साथ वह स्वीकृत हुई। शर्त यह थी कि यदि एक वर्ष के अंदर कौम को मेरी आवश्यकता मालूम हुई तो मुझे वापस दक्षिण अफ्रीका को पहुंचना होगा। मुझे यह शर्त कड़ी लगी, पर मैं प्रेम पाश में बंधा हुआ था। काचे रे तांतणे मन हरजीए बांधी, जेम ताणे तेम तेमनी रे, मने लागे कटारी प्रेमनी। मीराबाई की यह उपमा थोड़े बहुत अंशों में मुझ पर घटित हो रही थी। पंच भी परमेश्वर ही हैं। मित्रों की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता था। मैंने वचन दिया और उनकी अनुमति प्राप्त की। सन 1896 में जब मैं देश आया था तब भी भेंटें मिली थी, पर इस बार की भेंटों से और सभाओं के दृश्य से मैं अकुला उठा। भेंटों में सोने चांदी की चीजें तो थी ही, पर हीरे की चीजें भी थी। साथ ही इन भेंटों में 50 गिन्नियों का एक हार कस्तूरबा के लिए था, पर वह वस्तु भी मेरी सेवा के कारण ही मिली थी, इसलिए वह दूसरी भेंटों से अलग नहीं की जा सकती थी। जिस शाम को इनमें से मुख्य भेंटें मिली, वह रात मैंने पागल की तरह जाग कर बिताई। मैं अपने कमरे में चक्कर काटता रहा, पर उलझन किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ों की कीमत के उपहारों को छोड़ना कठिन मालूम होता था, पर रखना उससे भी अधिक कठिन लगता था। मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे ये चीजें रखनी ही नहीं चाहिए। पारस जी, रुस्तम जी आदि को इन गहनों का ट्रस्टी नियुक्त करके उनके नाम लिखे जाने वाले पत्र का मसविदा मैंने तैयार किया और सवेरे स्त्री पुत्र आदि से सलाह करके अपना बोझ हल्का करने का निश्चय किया। मैं यह जानता था कि धर्मपत्नी को समझाना कठिन होगा, बच्चों को समझाने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास था। अतः उन्हें इस मामले में वकील बनाने का मैंने निश्चय किया। लड़के तो तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, हमें इन गहनों की आवश्यकता नहीं है, हमें ये सब लौटा ही देना चाहिए, और जीवन में कभी हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता हुई तो क्या हम स्वयं न खरीद सकेंगे। मैं खुश हुआ। मैंने पूछा, तो तुम अपनी माँ को समझाओगे ना? जरूर जरूर, यह काम हमारा समझिए। उसे कौन ये गहने पहनने हैं? वह तो हमारे लिए ही रखना चाहती है, हमें उनकी जरूरत नहीं, फिर वह हट क्यों करेगी। पर काम जितना सोचा था उससे अधिक कठिन सिद्ध हुआ। भले आपको जरूरत न हो और आपके लड़कों को भी न हो, बच्चों को तो जिस रास्ते लगा दो उसी रास्ते वे लग जाते हैं। भले मुझे न पहनने दें, पर मेरी बहुओं का क्या होगा? उनके तो ये चीजें काम आएंगी ना, और कौन जानता है कल क्या होगा। इतने प्रेम से दी गई चीजें वापस नहीं की जा सकती। पत्नी की वाग

धारा चली और उनके साथ अश्रुधारा मिल गई। लेकिन बच्चे दृढ़ रहे, मुझे तो डिगना था ही नहीं। मैंने धीरे से कहा, लड़कों का ब्याह तो होने दो, हमें कौन उन्हें बचपन में ही ब्याहना है। बड़े होने पर तो ये स्वयं ही जो करना चाहेंगे करेंगे, और हमें कहाँ गहनों की शौकीन बहुएं खोजनी हैं। इतने पर भी कुछ कराना ही पड़ा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा। जानती हूँ आपको, मेरे गहने भी तो आपने ही ले लिए ना। जिन्होंने मुझे सुख से न पहनने दिए वह मेरी बहुओं के लिए क्या लाएंगे। लड़कों को आप भी बैरागी बना रहे हैं, ये गहने वापस नहीं दिए जा सकते, और मेरे हार पर भी आपका क्या अधिकार है। मैंने पूछा, पर यह हार तुम्हारी सेवा के बदले में मिला है या मेरी सेवा के। कुछ भी हो, आपकी सेवा मेरी भी सेवा हुई। मुझसे आपने रात दिन जो मजदूरी करवाई वह क्या सेवा में शुमार न होगी। मुझे रुलाकर भी आपने हर किसी को घर में ठहराया और उसकी चाकरी करवाई, उसे क्या कहेंगे। ये सारे बाण नुकीले थे, इनमें से कुछ चुभते थे, पर गहने तो मुझे वापस करने ही थे। बहुत सी बातों में मैं जैसे तैसे कस्तूरबा की सहमति प्राप्त कर सका। सन 1896 और 1901 में मिली हुई भेंटें मैंने लौटा दी। उनका ट्रस्ट बना और सार्वजनिक काम के लिए उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियों की इच्छा के अनुसार न किया जाए, इस शर्त के साथ वे बैंक में रख दी गईं। इन गहनों को बेचने के निमित्त से मैं कई बार पैसे इकट्ठा कर सका हूँ। आज भी आपत्ति कोष के रूप में यह धन मौजूद है और उसमें वृद्धि होती रहती है। अपने इस कार्य पर मुझे कभी पश्चाताप नहीं हुआ। दिन बीतने पर कस्तूरबा को भी इसके औचित्य की प्रतीति हो गई। इससे हम बहुत से लालचों से बच गए हैं। मेरा यह मत बना है कि सार्वजनिक सेवक के लिए निजी भेंटें नहीं हो सकती। महात्मा गांधी द्वारा रचित सत्य के साथ मेरे प्रयोग से आज आपने ये संदर्भ सुना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब सुनिए महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से ये भजन।

मीडिया वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स और साथ ही एफएम 102.3.6 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हम तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर है फिल्म संगीत सुहाना सफर।

कीजिए स्वीकार एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फिल्म संगीत सुहाना सफर लेकर हम हाजिर हैं, और जब बात होती है सुहाना सफर की, तो एक ऐसा सफर जो हमें खूबसूरत लगता है, जिसमें हमें सुहानापन लगता है, ऐसे ही बॉलीवुड ने हमें कुछ गीत ऐसे दिए कि बहुत सारे गीत आए, बहुत सारी फिल्में आईं, और फिल्मों में तरह तरह के गीत, तरह तरह के गीतकार, संगीतकार और गायकार भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गीत ऐसे हैं जो सुपरहिट थे, सुपरहिट है और सुपरहिट रहेंगे। तो एक सुपरहिट गीत आपकी नज़र हम कर रहे हैं।

कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर आवाजें, दामिनी फिल्म से लिया हमने ये गीत। गीत के लिए बोल लिखे समीर ने और संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। फिल्में बदलती रहीं, दौर बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जो समय की सीमाओं को पार कर सीधे दिल में अपना घर बनाते रहे। कुछ धुनें हमें बीते दिनों की गलियों में भी ले जाती हैं, तो कुछ गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने अपने पहले दिन में हमें लगे थे। जी हाँ, कुछ गीतों को जब हम सुनते हैं ना, तो हमारी उम्र का कोई कोई दौर हमें याद आ जाता है। चलिए अब सुनते हैं डर फिल्म का ये गीत।

0: डर फिल्म के इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा और शिव हरी ने अपने संगीत से सजाया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर से लौटते हैं आपके पास।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुबह का समय बहुत व्यस्तता का होता है और इसी व्यस्तता में सबसे ज्यादा व्यस्त जो होती है ना वो महिलाएं होती हैं। जी हाँ, घर की महिलाएं। अरे भाई जरा आप भी बैठिए, थोड़ी सी चाय की चुस्कियों को जरा मजे से लीजिए और इन गीतों का भी तो आनंद लीजिए। आपकी जिंदगी भी तो है, आप क्या बस यूं ही भाग दौड़ करती रहेंगी, सुबह से लेकर शाम तक सबके लिए सोचती रहेंगी। जरा कुछ खुद के लिए भी सोचिए, खुद के दिल को दिमाग को भी सुकून दीजिए और हमारे साथ इन गीतों का आनंद लीजिए।

तो दिल की खिड़कियां खोल दीजिए, यादों को पास बुला लीजिए और तैयार हो जाइए इन गीतों को सुनने के लिए जिनके सफर पर हम निकले हैं आपके साथ ये सुहाना सफर तय करने को।

जमीर काजमी ने गीत की बोल लिखी, अनु मलिक ने संगीत दिया, विजय पथ फिल्म के इस गीत को गाया कुमार सानू, साधना सरगम और साथियों ने। लेते हैं एक ब्रेक।

0: न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और यूट्यूब लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1-800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए 1-800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आए। दिनांक याद रखिए 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक

0: dici.
1: श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत सुहाना सफर। कुछ गीत मौसम की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ गीत खुशबू की तरह होते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो पेश है ऐसा ही एक यादगार गीत जो सफर को सुहाना बना रहा है।

उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की आवाजें कीमत फिल्म से सुना आपने ये गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजें समीर की बोल नदीम श्रवण का संगीत। फिल्म का नाम हम हैं राही प्यार के।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत सुहाना सफर इसी गीत के साथ संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का आज का अंक।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
4: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के

0: साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीपफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर

0: जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़।

0: युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी
3: मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और साथ ही FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आइए श्रोताओं सुनते हैं राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं धनराज रावल के स्वर में

श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और यूट्यूब लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए, 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व, एक योग, एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग, एक उद्देश्य।

0: और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं धीरा सेन का गाया ये लोकगीत।

0: फतेह कुमारी के गाए इसी लोक गीत के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओ सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत की ये पहली पेशकश आपकी नजर।
1: गीत खिलत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी।

0: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और यूट्यूब लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए, 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।
1: हमारे श्रोता सुगम संगीत सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। कैलाश खैर की आवाज में सूफी अंदाज बिखेरने के बाद आइए सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज में ये गजल।

हमारे श्रोता कुछ ही पलों की बात सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित होने वाले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। करते हैं थोड़ा सा इंतजार।

0: सवेरे के 9 बजने वाले हैं। ठीक 9 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी।
2: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देश दिया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
1: देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। मंत्रालय ने बताया कि किसान 9140245981880 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में आगामी 1 और

0: 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहलों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जन कल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में चल रहे विशेष यातायात अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल 9703 वाहनों के खिलाफ एक ही दिन में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बीएल मीणा ने बताया कि सबसे ज्यादा 3638 मामले वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के दर्ज किए गए। इसके अलावा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर अनधिकृत लेखन, मॉडिफिकेशन और अवैध हूटर बत्ती तथा प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। इधर राजस्थान पुलिस ने भी आमजन से जल्दी मुनाफे के लालच में बिना जांच पड़ताल के किसी अनजान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। कई जिलों में आंधी चलने और बारिश होने के समाचार हैं। डीग, धौलपुर और भरतपुर में तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं कोटपुतली बहरोड के कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। वहां तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: बहरोड क्षेत्र में देर शाम मौसम में बदलाव के कारण तेज हवा और तूफान के कारण दर्जनों पेड़, 80 से अधिक बिजली के पोल और 50 से अधिक ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई, जिसे सुधारने के लिए बड़ी संख्या में बिजली विभाग की टीमें देर रात तक विद्युत व्यवस्था बहाल करने में जुटी रही। बहरोड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं पारा भी लुढ़क कर नीचे आ गया। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली बहरोड।
0: दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अब भी गर्मी और उमस का असर बरकरार है। कल जैसलमेर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है।

इस मौसमी बदलाव से आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। प्रदेश की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का कल निधन हो गया। वे 98 वर्ष की थी। गौरी देवी का जन्म बाड़मेर के कोरण गांव में लोक कलाकार परिवार में हुआ। करीब 8 दशक तक वे मांड गायन के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। गौरी देवी ने देश भर में मांड गायन की प्रस्तुतियां देकर प्रदेश की लोक संस्कृति को एक नई पहचान दिलाई। वे भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध थी। उनके चर्चित गानों में बागा चालो केसरिया, 100 कोसों दूर बसे महारा साजन, आई आई सावणियरी तीज और केसरिया बालम पधारो शामिल है। उनके कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार प्रसारित होते थे। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। पाली के गवरी में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडिय वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। आइए श्रोताओ सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गीत आपकी नजर।

कुमार सानू, पूर्णिमा और साथियों की आवाजें। गीतकार और संगीतकार आनंद राज आनंद, मासूम फिल्म से सुना आपने ये गीत। आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं एक बेहतरीन सा गीत जो हमें एक बहुत खूबसूरत सा संदेश देता है कि ये जिंदगी है। जिंदगी में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक सीमित दुनिया में रहते हैं। हमारी सीमित दुनिया से बाहर भी बहुत लोग हैं जो हमसे टकराते हैं, हमसे ताल्लुक रखते हैं, हमसे कई वास्ते रखते हैं, मगर इन्हीं वास्तों के बीच कभी कभी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं और बातें जब बड़ी भी हो सकती हैं तो फिर कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उन शिकवे और शिकायतों को साथ लेकर दिल में बिठाकर जिंदगी को चलाया जाए, नहीं नहीं, बल्कि सारे शिकवे भुलाकर जिंदगी को जिया जाए। ऐसा ही एक खूबसूरत सा संदेश देता हुआ गीत आपके लिए आजाद देश के गुलाम फिल्म से अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज की आवाजों में।

0: नजर से नजर मिला के कहूं।
1: इस गीत के लिए बोल लिखे समीर ने, संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। और अब आपके पास आ रहा है वो गीत जो आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन हाँ, इस गीत के दीवाने भी कुछ अलग ही हैं।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे राजा और रंग फिल्म से गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और मौसिकार थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।
1: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और YouTube लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7008। नंबर एक बार फिर से सुनिए 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ।

मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और साथ ही FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। और अब हमारी श्रोता बहने तो कर रही हैं बड़ी बेकरारी से इंतजार अगले कार्यक्रम का, तो फिर आपके इंतजार की घड़ियों को विराम देते हुए हम लेकर हाजिर है महिला जगत कार्यक्रम और माइक को करते हैं एक दूसरी सखी के हवाले।

वादा किया है तो जरूर निभाएंगे। सूरज की किरण बनकर छत पे आएंगे, हम हैं तो जुदाई का क्या गम, तेरी हर सुबह को फूलों से सजाएंगे। जी हाँ मेरी प्यारी सखियों और सभी श्रोताओं, कोटा बूंदी का जो चंबल चैनल है वो आपके हर गम को दूर करने के लिए हर सुबह लेकर आता है आपके लिए नए नए कार्यक्रम, जो करते हैं आपके दिल और दिमाग दोनों को रिफ्रेश। और हमने पिछले कार्यक्रम में आपसे जो वादा किया था कि जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तो देखिए हमने अपना वादा निभाया और आ गई है आपकी रेडियो सखी कविता अपने उसी समय और उसी चैनल पर आपका चहेता कार्यक्रम महिला जगत लेकर। और करती हूँ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन बार बार, और इसके साथ ही स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। सखियों, वैसे तो हम अपने हर कार्यक्रम में आपसे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो आज का विषय है वो अपने आप में कुछ खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि उसका नाम है बेटी। बेटी जो अपने आप में खूबसूरत सा एहसास है हर उस माँ के लिए जो जिनके घर में बेटी है। और आज के वर्तमान समय में अपनी बेटी की दोस्त बनना और उसकी समस्याओं को करीब से जानना एक खूबसूरत सफर है, साथ ही बहुत अच्छी सोच भी है। आज के समय में बच्चों को एक सख्त माता पिता से ज्यादा एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत होती है। सखियों, अपनी बेटी की दोस्त बनने और उसकी उलझनों को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उसे बोलने का मौका दें। जब वह आपसे बात करे तो अपनी सलाह देने के बजाय पहले उसकी पूरी बात ध्यान से सुने। उसकी बातों के बीच में ही अपनी राय न थोपें और ना ही उसे तुरंत सही गलत का पाठ पढ़ाएं। बात करते समय अपना पूरा ध्यान उसी पर रखें ताकि उसे महसूस हो कि वह आपके लिए जरूरी है। और अगर वह अपनी किसी गलती या ऐसी किसी बात का जिक्र करे जो आपको पसंद नहीं, तो उस पर गुस्सा बिल्कुल भी ना करें और ना ही उसे तुरंत डांटें। आप उसे यह विश्वास दिलाएं कि वह आपसे दुनिया की कोई भी बात शेयर कर सकती है। आप उसका हमेशा साथ दें।

दी। बाद में उसे प्यार से और दूसरे उदाहरण देकर धीरे से समझाएं। आप अपनी बेटी के साथ उसकी पसंद के काम जैसे कुकिंग, शॉपिंग, स्किन केयर या कोई मूवी देखना, जो भी उसे पसंद हो वो करें। कभी कभी उसे सिर्फ सहेली की तरह बाहर घुमाने ले जाएं, जहां पारिवारिक जिम्मेदारियों से हटकर बातें हों। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करें, वह उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो आगे क्या करना चाहती है, किस चीज में उसकी रुचि है, ये जानने की कोशिश करें। और सखियों, आज की पीढ़ी की जो भाषा, सोशल मीडिया और उनके तौर तरीके हैं, उनको समझने की कोशिश करें, इससे आपके बीच जनरेशन गैप कम होगा। और सखियों, बेटियां बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही समझदार भी होती जाती हैं। उनके साथ जो समझदारी का वक्त है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है, और फिर एक वक्त आता है जब वो आपके घर की इस दहलीज को छोड़कर दूसरे घर की दहलीज में कदम रखती हैं। तब वो यही कहती हैं

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।

0: अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, हम बात कर रहे थे बेटियों की, तो बेटियों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए अपना हुनर दिखाने का। ऐसी ही एक बेटी से हम आज आपको मिलवा रहे हैं, जिसने आध्यात्मिकता के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आइए सुनते हैं स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ये पुनः प्रसारित भेंट वार्ता। प्रभु की जो कृपा है वो हर किसी पर ऐसे ही नहीं बरसती है। हे राधे, तेरे दर्शन के लायक कहाँ मेरी ये नजर है, ये तुम्हारी ही कृपा है कि तुम्हारी नजर मेरी तरफ है। तो सखियों, हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्हें आप लोगों का असीम प्रेम मिला है, तो आइए मिलवाते हैं आपको जया किशोरी जी से। जया किशोरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में।
5: धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।
6: तो सर्वप्रथम आपकी जन्म पृष्ठभूमि को जानना चाहेंगे जया किशोरी जी।
5: जी, कोलकाता में मैंने जन्म लिया और मैं वहीं रहती हूँ। ऐसे गांव परिवार पूर्वज जो है वो सुजानगढ़ से है, पर मेरे पिताजी दादाजी सब कलकत्ता ही आ गए थे, तो हम सब तब से कलकत्ता ही रहते और जन्म भी कलकत्ता में ही हुआ मेरा।
6: जया जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका नाम जया शर्मा है, आपके गुरुजी आपको राधा कहते थे, फिर आपके नाम के साथ जो किशोरी शब्द जुड़ा हुआ है वो कैसे जुड़ा?
5: राधा जी का नाम ही किशोरी जी है, जैसे हम भगवान के कई नाम होते हैं वैसे राधा जी का एक नाम किशोरी भी है जी। तो गुरुजी मुझे राधा तो ऐसे बुलाते ही थे, लेकिन जब उन्होंने कथा के बारे में मुझे थोड़ा ज्ञान दिया और उन्होंने मुझे देखा कि मैं उसमें रुचि ले रही हूँ, सीख रही हूँ, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये उपाधि किशोरी की उपाधि दी थी।
6: आपकी जो शैली है, भाषा है, वो वास्तव में कर्णप्रिय और लुभावनी है, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को आपकी मधुर ध्वनि का रसपान भक्ति गीत से करवाएंगी?
5: जी जरूर, मैं अपना पसंदीदा भजन ही गाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भक्ति में ज्यादा ध्यान रखती हूँ, या तो उसमें यही है कि आपको समर्पण का भाव देना पड़ता है कि हम जैसे भी हैं आपके हैं और संभालना भी आपको है।

0: प्रियतम। जया जी, आपने भजन गाना कथा करना किस उम्र से शुरू कर दिया था? आपके परिवार से क्या आपको इतना समर्थन मिला?
1: मैं 6 वर्ष की थी, मैंने तभी से भजन गाने शुरू कर दिए थे और मैंने 11-12 वर्ष के आसपास कथा शुरू कर दी थी।
0: इतनी छोटी सी उम्र में आपने भजन करना कथा करना शुरू कर दिया, पर हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों की जो उम्र होती है, छोटी उम्र होती है, उनमें भक्ति भावना कम होती है और आपके अंदर ये जो भक्ति भावना है वो बचपन से ही है, तो आपकी रुचि भक्ति में थी या आपने बनाई?
1: रुचि हमेशा से थी, क्योंकि मेरे परिवार का जैसा माहौल होता है वैसी रुचि बच्चों की होती है। हमारे परिवार में भक्ति का ही माहौल हमेशा से था। हम लोग सब रोज शाम को हनुमान चालीसा करते थे और हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार हम सब परिवार वाले मिलकर भजन कीर्तन करते थे, जो घर के कुछ 5-6 सदस्य हैं वो सब मिलकर ही। तो भक्ति की भावना हमेशा से ही थी, बचपन से मैंने भजन काफी सुन रखे थे, उसी के कारण भजनों में आनंद मुझे आता था और रुचि भी फिर वहीं हुई।
2: अच्छा, आपकी कथाएं सुनी है, तो आप अधिकांश जो भी वाचन करती हैं उसमें दृष्टांत देती हैं, इसमें साहित्यिक ज्ञान और आत्मिक भाव का कितना योगदान रहता है और कैसे?
1: जो भी दृष्टांत मैं देती हूँ कथा में, वहाँ पर हम देखिए सभी चीजें ले लेते हैं। परिवार को लेकर अगर कुछ अच्छी बातें हैं, क्योंकि मैं यही कोशिश करती हूँ मैं कोई एक उद्देश्य के साथ ना जुड़कर सभी चीजों में थोड़ा थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देती जाऊँ। वो चाहे हम खुद को डेवलप करने को वो चीजें हो, सोसाइटी को डेवलप करने की चीजें हो, या आप आध्यात्मिक फील्ड में अगर जाते हैं, भगवान से रिलेटेड कोई बातें होती है, भक्ति की बातें होती है, तो हम सभी चीजों को एक साथ जोड़कर चलते हैं कि आप जब भक्त वहां से बाहर निकले तो वो भगवान में भी प्रेम रख ले, वो देश की सेवा करने में भी थोड़े जुड़ जाए, वो समाज को लेकर भी थोड़े सतर्क हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम सभी चीजों को लेकर जो दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम कोशिश करते हैं और जितना हो सकता है उतना करते हैं।
2: कि जहां माता श्री शब्द का आता है वहाँ आपके भाव में परिवर्तन आता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक मन में जिज्ञासा।

0: क्या सच में जानना चाहेंगे?
1: जी, एक चीज तो है कि सभी को अपनी माता से बहुत प्यार होता है और मैं अपनी माँ से दूर रहती हूँ क्योंकि वो कलकत्ता रहते हैं और मैं कार्यक्रम में रहती हूँ, साथ नहीं आ पाते छोटी बहन की पढ़ाई की वजह से, वो चीजें भी है। और एक है जो मैं कथा में कहती हूँ उसी प्रसंग के साथ, कि आज जो माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिए जाते हैं, जब मैं स्कूल के टाइम में कई बार मैं वृद्धाश्रम जा चुकी हूँ, कई बार मैं गई हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि वो कैसे अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, रोते हैं, या उन्होंने हम बच्चों को, जब हम गए थे तो हम समय लेकर गए थे ताकि हम उनको थोड़ा आनंद दिला सके या उनके पास रह सके, ताकि वो अपने जो बच्चों को याद करते हैं, पोते पोतियों को याद करते हैं, तो वो हमें देखकर खुश हो जाते थे। तो कई माता पिता हमसे अपने घर के डिस्कशंस करते थे कि उन्हें कैसे निकाला गया या उन्हें कैसे, तो वो चीजें भी याद आने लगती है और अच्छा नहीं लगता। माँ है, दादी है, दादी अब मेरी है नहीं, उनकी भी आती है, सारी चीजें जब सारे भाव एक साथ मिलते हैं तो फिर ज्यादा भावुक हो जाते हैं, कभी कभी रोना भी आ जाता
2: है। हर जो महिला है, हमारी महिला सखियां भी सुन रही हैं, तो उनके मन में भी एक जिज्ञासा होगी कि जो एक आम लड़की की दिनचर्या होती है और जो एक कथा करने वाली जो जया किशोरी जी हैं उनकी दिनचर्या है, तो उनमें क्या अंतर पाया जाता है और उस कथा के साथ और अपनी पढ़ाई के साथ ये किस तरह अपना सामंजस्य करती है?
1: ऐसे तो देखिए ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता दिनचर्या में, जैसे सबकी दिनचर्या होती है बिल्कुल वैसे ही है। परिवार में रहती हूँ मैं, घर में है, जब सोते हैं, उठते हैं, नहाते हैं और पूजा भी करते हैं, फिर माता पिता के साथ रहते हैं, कभी टीवी देखते हैं, पढ़ाई, अब बस थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि वो दूसरी पढ़ाई करते हैं अपनी, मैं अपनी अलग आध्यात्मिक क्षेत्र की पढ़ाई करती हूँ जब मुझे पढ़ना होता है या कुछ सीखना होता है, तो बस यही अंतर है उनमें और मुझ में कि उनकी पढ़ाई अलग है, मेरी पढ़ाई अलग है। बाकी जैसे एक साधारण लड़की होती है, साधारण लड़की की दिनचर्या होती है, बिल्कुल वैसी दिनचर्या है मेरी।
2: कि आज जो महिलाएं तनाव में है और वो बहुत दुखी रहती है, हर चीज का वो स्ट्रेस ले लेती है, तो उसकी वजह क्या मानती है?
1: पारिवारिक माहौल को मैं वजह जरूर, जब परिवार का जो माहौल होता है, मान लीजिए जब पिता जैसे आते हैं ऑफिस से, तो अगर वो टेंशन में है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें कोई और टेंशन ना दे कि वो गुस्से में है या वो, तो हम संभाल के रहते हैं। पर हम माता के साथ ये कभी नहीं करते, जब घर में हम देख भी रहे कोई तनाव है पर हम माता को अपने हर काम बोलेंगे करने को, या फिर हम सोचते हैं कि वो जब गुस्सा हो रही है तो वो इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है, पर हम नहीं समझ पाते कि वो भी जब पूरे घर को संभाल रही है, जैसे एक पिता पूरे ऑफिस को संभालते हैं वो पूरे घर को संभालती है, और उन्हें तो हम संडे के दिन भी छुट्टी नहीं देते, तो वो तनाव दूर करना परिवार का कार्य है। जब परिवार को ऐसा लगे कोई एक दिन हम वीक में ऐसा भी रखे जब हम माता को काम ना करने दे और हम शायद उनकी सहायता करें कामों में, जैसे अब्रॉड में देखिए बच्चों के लिए होता है, कई स्कूलों में जब शनिवार रविवार होते हैं ना तो उनको उनके मन की चीजें कराई जाती है, ताकि वो मंडे से जब स्कूल आए तो वापस फ्रेश दिमाग से आए, हंसते खेलते खुशी से आए, ना कि पढ़ते पढ़ते पढ़ते वो बहुत थक चुके और फिर तनाव में ही रहे या स्ट्रेस में रहे, बहुत प्रेशराइज रहे, ऐसे ना आए। तो माता के लिए भी शायद हम ऐसा कर सकते हैं, नारियों के लिए मैं कहूँ, माता ही नहीं जो घर की बहू भी हुई, जो घर के काम करती है, तो आप कोई एक दिन हम हफ्ते का ऐसे रखे जब हम उनको आनंद दिलाए या उनका मनोरंजन करे या उनको थोड़ा आराम करने दे, तो दूसरे दिन से वो भी एक अच्छे मूड के साथ, एक फ्रेश मूड के साथ परिवार को वापस एक करने में या परिवार के कार्यों में लग जाए।
2: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने, उनमें की एक अलग से एनर्जी आ जाएगी। और कि जो संयुक्त परिवार है वो बहुत बिखरते जा रहे हैं, दिन ब दिन वृद्धाश्रमों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सहनशीलता कम हो गई है आज, कोई ज्यादा हम सहन नहीं करना चाहते, घर में थोड़ा सा भी अगर झगड़ा हो जाए या झगड़ा ही नहीं मैं कहूँ, अगर हमारे ओपिनियंस भी बदल जाते हैं कि किसी की सोच थोड़ी अलग है, मेरी सोच थोड़ी अलग है, तो हम ये कोशिश नहीं करते कि हम दोनों की सोच को लेकर चलें। प्रेम हम इसी कहते हैं कि अगर आप जिनसे प्रेम करते हैं उनमें कुछ गलतियां भी होती है, उनकी सोच अलग भी होती है, पर आप उनके साथ लेकर और उन्हें भी इज्जत देकर, उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी सोच है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए अपनी फीलिंग्स के साथ दोनों साथ आगे बढ़ते हैं, तभी एक सही रिश्ता आगे जाता है। लेकिन परिवार में ये चीजें कम हो रही है, अगर थोड़ी भी सोच अलग होती है तो हम अलग रहने का सोचते हैं कि शांति तभी मिलेगी जब अलग रहेंगे। शांति आपको जरूर मिल सकती है पर संस्कार नहीं मिल पाएंगे, परिवार का प्यार नहीं मिल पाएगा, वो एकता नहीं मिल पाएगी, फिर हम बच्चों को शायद सही संस्कार नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ी सहनशीलता रखे, थोड़ा प्यार रखे, सोच अगर अलग है तो दोनों की सोचों को हम इज्जत दें और उनके साथ परिवार को आगे लेकर जाए।
0: धर्म का उपदेश यानी धर्म का प्रचार कितना प्रासंगिक है, कितना धर्म का उपदेश प्रभावित करता है, जबकि आए दिन देखिए जो घटनाएं हैं वो इन्हीं कुछ संबंधित लोगों से निकल कर आ रही हैं। धर्म की आड़ में जो शोषण हो रहा है उसके बारे में आज के समय के, आज के परिप्रेक्ष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए एक मैं यही कहूंगी कि इसमें भी हम कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम कोई भी एक बात को देखकर, एक गुण को देखकर, एक चमत्कार को देखकर किसी पर अंधविश्वास ना करें। और सबसे बड़ी बात आज के समय में जो हर प्रॉब्लम्स की जड़ है, जो आपने कहा धर्म के हर प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, कि हम इंसान को भगवान बना देते हैं।

0: आप भगवान को भगवान रहने दे, इंसान को इंसान रहने दे, भगवान एक ही है तो उन्हें एक ही रहने दे, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। अगर मनुष्य ही भगवान होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर इतनी अलग अलग रचनाएं होती ही नहीं। तो अब भगवान एक है, आप भगवान को भगवान रहने दे। हाँ, आप गुरु मानते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म की सीख किसी से लेते हैं, आप जरूर लीजिए, पर उसे सिर्फ आप भगवान और अपने बीच का निमित्त बनाइए कि हाँ वो आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, पर वो ही आपके भगवान बन गए हैं, या आप सिर्फ उन्हीं की पूजा कर रहे हैं भगवान की नहीं, या मंदिरों में उन्हें रखा जा रहा है, आप ऐसा ना करें। जब भगवान, जब तक भगवान रहेंगे और इंसान इंसान रहेंगे सब सही चलेगा। दोनों को हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो गलतियां होनी ही होनी है, धोखा मिलना ही मिलना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं और कितना विश्वास कर रहे हैं। विश्वास भी हम ही करते हैं, जब विश्वास टूट जाए तो उन्हें नीचे भी हम ही लेकर आते हैं, तो इतना ऊपर आप भगवान बनाते ही क्यों है उन्हें। तो आप धर्म को सिर्फ भगवान से जोड़े, सेवा से जोड़े, सबके साथ रहे, सबकी सेवा करे, पर यही आप किसी और को भगवान का दर्जा ना दे।
1: मानव समुदाय एक भटकाव की परिस्थिति में है तो इसे कैसे सही दिशा दी जाए?
0: ये संस्कारों का ही मैं कहूंगी, हम परिवार का क्या, बच्चों को हम कैसे संस्कार देते हैं, और संस्कार बचपन में ही दिए जाते हैं। बड़े होने के बाद शायद बच्चे एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब वो ये समझते हैं कि माता पिता को शायद जो उनका भी हाल है या उनकी जो स्थिति है वो समझ नहीं रहे। बच्चे भूल जाते हैं कि वो उम्र माता पिता खुद पार कर चुके हैं, और जो उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है या जो सोच उन्हें आ रही है, जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही है, वो चीजें वो भी सह चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। पर लेकिन हम जैसे कहे कि वो उस समय दिमागी संतुलन ऐसा ही होता है, हर किसी का होता है, ये मैं भी कहूंगी कि एक समय के लिए हर बच्चे को ये चीज आती है जब उसे ऐसा लगता है कि उसे उसके माता पिता नहीं समझ पा रहे। इसीलिए संस्कार कहा जाता है कि बचपन में दिए जाते हैं, जब बच्चा पूरी तरीके से आप पर ही निर्भर होता है। और इसीलिए हम देखते हैं ना, 10वीं 11वीं कक्षा की बातें हमें शायद जिंदगी भर याद नहीं रहती, पर ABCD हमें हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो उम्र वैसी है उस समय जो आप सिखाते हैं, जो आप ज्ञान उन्हें देते हैं, संस्कार देते हैं, वो बच्चे उसे जिंदगी भर याद रखते हैं, उनके वो दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए आप बचपन में उन्हें संस्कार दे, जिससे वो भटके ना, जब वो किस गलत संगत में भी जाए तो उसके संस्कार इतने अडिग रहे कि वो भटकाव उसे ना हो। वो ये सोच के रखे कि हाँ मैं सबके साथ हूँ, मैं सबसे मिलजुल रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार के जो संस्कार है वो मुझ में रहे, जो मेरे समाज के संस्कार है, जो मेरे देश के संस्कार है, वो मुझ में रहे, चाहे वो बाहर पढ़ने चला जाए तब भी।
1: बातचीत के अंत में जया जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जो कथा करती हैं उसके माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देती हैं?
0: महिलाओं को ही नहीं, मैं एक्चुअली वो जो कथा मैं करती हूँ मायरा मैं कहूंगी, भागवत तो देखिए, भागवत में हर चीज आपको मिल जाती है। भागवत में ठाकुर जी के सारे अवतारों के बारे में, उसमें ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है अवतारों के बारे में, उन्होंने क्या क्या अवतार लिए, क्यों लिए, क्या किए उन अवतारों में। पर जो मायरा मैं करती हूँ वो एक पारिवारिक कथा है, उस कथा में सास बहू ननद देवरानी जिठानी बेटा बेटी सबके बारे में है। तो एक परिवार को कैसे रहना चाहिए वो सीख आपको उससे मिलती है, कि पिता को बेटी के साथ कैसे रहना चाहिए, एक सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, पति को पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, और या समाज में हम एक इंसान को इंसान के साथ कैसे रहना चाहिए। तो ये कथा पूरी होती है। पर हाँ, ये मैं कहूंगी इस कथा में महिलाएं ज्यादा आती हैं, क्योंकि महिला की ही कथा है, नानी बाई की कथा है, वो अपना जीवन परिचय है उसमें कि उन्होंने कैसे शादी के बाद क्या क्या किया, क्या दिक्कतें उन्हें आई, मायरा भरते हैं, तो वो सारी चीजें एक महिला को लगती है कि हाँ ये मेरे साथ भी शायद हो चुका है। किसी किसी के साथ होता है, जहां सास बहू की नई बन रही हो, तो जैसे नानी बाई की सास जब उन पर अत्याचार करती थी या कुछ कहती थी, तो किसी बहू को लगता है कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है, या बेटी पिता के जो प्रसंग आते हैं तब बेटी को लगता है कि हाँ शादी करके जाती है, तो हाँ जब मैं गई थी तब मुझे भी यही ख्याल आए थे। तो महिलाओं को ज्यादा अच्छा लगता है, प्लस जब एक महिला ही ये बात कह रही हो तो उन्हें और अपना लगता है ये चीज, तो महिला ज्यादा आती है। पर इस पूरी कथा का प्रसंग का बात यही कि आप पूरे परिवार को कैसे रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास कैसे करना चाहिए, कि आपके इस पूरे जीवन में बहुत दिक्कतें सबके जीवन में आती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, पर प्रॉब्लम के बीच भी आप भगवान पे भरोसा ना हटाएं।
1: जी, यही कारण है कि महिलाएं आपके साथ जुड़ा हुआ पाती हैं, उस कथा में के जो पात्र हैं उनसे भी अपने आप को जुड़ा हुआ पाती हैं।
2: बिल्कुल जया जी, आपकी बातें सुनकर ये लग रहा है कि धर्म और अध्यात्म का मणिकंचन योग भारतीय संस्कृति का प्राण है। इसे जीवंत बनाए रखने के लिए देवी जया किशोरी जी जैसे धर्मनिष्ठ विद्वानों विदुषियों का सहयोग हमारे समाज को निरंतर दिशा प्रदान करता है।

0: रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ करते हैं पुनः प्रणाम, सधन्यवाद जया किशोरी जी को।
1: सखियों, अभी आपने सुनी पुनः प्रसारित भेंट वार्ता अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी जी के साथ। और सखियों, आज है 12 जून और आज के दिन हम मना रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। जैसा कि आप ये भली भांति जानती ही हैं कि हर दिवस को मनाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बाल मजदूरी को पूरी तरह से समाप्त करना और बच्चों को उनके शिक्षा और सुरक्षित बचपन का अधिकार दिलाना है। और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 से की थी। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों अभी चल रही है छुट्टियां और आपके बच्चों के स्कूल की छुट्टियों का और अपनों के साथ घूमिए फिरिए और आनंद लीजिए इन पलों का जो इतनी साल भर के इंतजार के बाद मिलते हैं और इसके साथ ही आनंद लीजिए इस खूबसूरत से गीत का भी।

सखियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है enjoyairkota@gmail.com। हमें रहेगा आपके खतों का इंतजार। अब हमारी जो घड़ी की सुइयां हैं वो हमें इजाजत लेने की तरफ इशारा कर रही हैं। अब दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता को आज्ञा। नमस्कार।

महिला जगत कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: हेलो फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेट में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं, बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले की बात हुई है विविध भारती में, फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है मारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो टारगेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने से ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर करता नहीं था, सोचे थे हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा, तो
1: मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, मेरे जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी, और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी।
0: पसीना आता है।
1: जी।
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी।
0: बताइए अरुण साहब, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूचरंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी, हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, देखें बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे, खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको, जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो साइली सुनता हूँ, साकी साइली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं हम किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे, बैटिंग करते हैं बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी,
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे, फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको
1: आज? मुझे खुदा गवाह फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाते हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे। हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी तक अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, जानो 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था।
0: हाँ,
1: पहले से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने।
0: क्या
1: फिर आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इश्क मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनते मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी,
0: क्यों?
1: लड़की थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर बारसी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है, आदमी नहीं चाहो करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश
0: और
1: अच्छे कार्यक्रम है
0: वो आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: अभी आगे बहुत पत्र लिखता हूँ।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम डेमाजी असम से विमल बसुंतर बोल रहे हैं। मैम
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ।
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है।
0: अच्छा समय रहते घर पहुँच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा इसे करते रहता है और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान और दूसरा है।
0: हाँ। और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हूँ, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुनके मैम।
0: अच्छा क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बात जिद्दे हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है। हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।

0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए तो क्या कहेंगे?
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं। खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए?
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हैं बच्चे। लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है व्यक्तित्व होती है वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम एक बहुत ही प्यारा सा गाना है फिल्म खलनायक का गाना है ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है। आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे। आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना। आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय। कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है। काश आपके पास होते तो आपकी

0: इतने ही बैठ कर चाय बनाते और पी लेते?
1: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी, एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है। तो बताइए, चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। चांद

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जादव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करती हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपके?
1: मैं खेती की सारी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किस्से होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद

0: खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

ताजमहल फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, तर्ज रोशन की थी। आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली के स्वर में एक गीत। ये रचना है महादेवी वर्मा की लिखी हुई, जयदेव ने संगीत तैयार किया। फिल्म का नाम त्रिकोण का चौथा कोण।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी, कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

दौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारत।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम की आवाज, कलाम सरदार अंजुम का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव के साथ ही एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज पर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
0: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।

0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है।

जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
5: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और YouTube लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7008। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए, 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।
4: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 होने को हैं। कुछ ही पलों के बाद हमारे श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

तारे जमीन पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए।

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में, संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गईयों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा है इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाएं। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से जरा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने
1: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से विशेष प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के विषय पर आधारित इन प्रदर्शनियों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया जा रहा है। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जिला सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बाड़मेर में ये प्रदर्शनी भगवान महावीर टाउन हॉल में और बारां के जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई है। आमजन के अवलोकन के लिए ये प्रदर्शनी 14 जून तक खुली रहेगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार, राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप से भारतीय दल की वापसी के दौरान बीमार पड़ने के बाद राणा का हाल ही में चिकित्सा उपचार किया गया था। उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें स्टंट डाला गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में सक्रिय एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके असर से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बरसात हुई, जिससे श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 52 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अब भी जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हाँ, एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और न ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं सीधे दिल से जोड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्मपत्नी है, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है। एक ने लिखा है किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो। एक श्रोता ने लिखा है कभी कभी दिल से दिल किसी का शुक्रिया अदा करना भी कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं रोजाना। एक श्रोता ने लिखा है मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। एक श्रोता ने लिखा है विविध भारती के नाम से कई सारी साइट है, नए लोगों को बहुत परेशान करती है। तो देखिए यहाँ पर जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा लिखा है और ब्लू टिक है, विविध भारती की जो असली प्रोफाइल है, तो वहां जाके देख सकते हैं। और इस समय जहां से आपको ये सुनने को मिल रही है ये बात, जहां से टिप्पणियां मिल रही हैं, वहां पर आप आइए। और विविध भारती की लिंक भी है जो जिसे आप देखकर वहां पर पहुंच सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल है वो नकली प्रोफाइल है, याद रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहां यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएं जन्म लेती हैं। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। एक श्रोता ने लिखा है वही। वाह, गानों की तो लंबी फहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफर इतना लंबा हो जाएगा कि कभी खत्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई, हमने आपसे कहानी पूछी थी, जरा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफर में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रही, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को जितने उनके चाहने वाले हैं। सचमुच एक अलग तरह की आवाज़ थी। अब हम आपकी टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल प्रेम की जगह मोबाइल ने ले ली है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है आपके लिए। वैसे एक इस गाने में ये लाइन भी आती है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे पहचान है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कब किससे पहचान हुई, कौन सी पहचान रिश्ते में बदल गई, ये हमारा सवाल है। कोई दोस्त मित्र प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या भाई बहन का रिश्ता बन गया एक पहचान से। कई बार हम कहीं जाते हैं घूमने, कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, वहाँ मुलाकात होती है तो कुछ रिश्ते बन जाते हैं। कई बार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का। तो आप ये भी बता सकते हैं अपनी यादें साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है,

बचपन में नानी जी सुनाती थी कहानी। जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, खूब लंबी लंबी कहानियां। दादी और दादाजी बहुत प्यार करते थे। एक श्रोता ने लिखा है, नवी कक्षा में था जब मैं एनसीसी कैंप गया था। रोजाना ही जूनियर से कुछ न कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे, लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई। बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी लेकिन ना कुछ तो सजा मिलनी चाहिए क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या न माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए। तो देखा कि उनमें ये शब्द है तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म है भरोसा। कलाकारों के नाम जरा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही हैं, कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका है लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियां भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतजार और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहे आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद, हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि फला व्यक्ति दिल से चला जाए लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहन में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai की टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

0: यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, जरा ये भी तो अंदाजा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब जरा कुछ और टिप्पणियां भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविजन पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, पर अफसोस वो अब नहीं है, ओह। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना,
1: के चेहरे से हटा सकता नहीं,
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है,
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान

0: कन्यादान फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिक और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है, हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो, एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने, गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन जरा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है सब ये गजल है सनम,
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

0: गैम्बलर फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियाँ याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहाँ हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपने जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ, और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियां प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीरा बाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।
1: संभाल

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतजार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं, प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम।

0: और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?
1: मिलोगी कभी?

गीतकार एसएच बिहारी आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है शर्मिला टैगोर एक

श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है। जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं, कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है। बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूं, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूं। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। मुकेश की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो जरूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गए, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मजा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है, यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आज के प्रोग्राम का सफर बस इतना ही। सुरीला सफर का यह सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: बारिसाल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दास गुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहूलुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
0: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्र पाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा।
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने

0: निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठी चार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पास गया और बोला,
1: लिसन, आई विल बी सेफ हियर विथ यू। Being a government officer, I have to obey the government orders.
0: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
2: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जनसमुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
3: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
2: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया। अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
3: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
0: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
4: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
0: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 32वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे।

0: कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम।
1: देने बाय, देने बाय।

रहने दाए, रहने दाए, हम

आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि

0: वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों।

महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित

0: 14 पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा

0: का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
1: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना, रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुनिए रोशन के बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जी मैं चांदनी जी बोल रही हूँ।
0: चांदनी जी
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है चांदनी जी। क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं? गृहिणी हैं? क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी क्या बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा
1: तो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा क्या बात है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक टैंक में है बेटा।
0: अच्छा तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। तो खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चावल आते थे ना पहले, खाकी कवर
0: जी,
1: उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए। वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है मैं ना भूलूंगी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
0: झांसी से धन्नो जायसवाल। धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: जी, तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और अब 2 लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए,
1: आप ही बिन
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी, जी बताइए मधु जी कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ
0: जी।
1: बताइए
0: जी, हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ
0: जी, सुनाइए।
1: अपनी रचना सुनाती हूँ
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई, जब से तुमको नाखुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: सरस्वती चंद्र का छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी, बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड़ जिले से।
0: वैजयंती सुतार, वैजयंती जी कैसा हाँ। चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैसेज हूँ और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ चौक में
0: जी।
1: हाँ, उनकी रसवंती चौक है, रसवंती
0: जी,
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और
1: बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है, मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
1: बहुत।
0: जी तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है वो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
0: जी जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब ये जो बातें हैं ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत अच्छा स्ट्रगल, और छुट्टों में भी कैसा करते तो पढ़ाई नहीं थी, ध्यान रहते थे उनके, फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, मैं बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे करते थे?
1: हाँ, ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करते हम उसको, ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है, तो देखिए ना बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
1: बहुत मैम
0: जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं?
1: बहुत पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: जी तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप? और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द

0: करते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा।
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं से खुली छत हो, हर आसमा पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार अगले कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो मैडम
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम, मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में? अभी
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में
0: जी,
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं
0: जी। तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की
0: जी। मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं?
1: ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर दे बनाते
0: जी। तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: हैं? से घर के, जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं।
0: अच्छा,
1: जॉब वाले तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है। जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली
0: जी।
1: तो मैं वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से है बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे आपका ट्रांसफर हुआ है, किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं।
0: अरे वाह,
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप शुरुआती, आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपने काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है। अच्छा। और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है,
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ दीदी।
0: जी तो सुनीता जी, हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं।
0: जी
1: देवर के एक है, एक मेरा है।
0: हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं, छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम वही कर देती।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी।
0: जी
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई है नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से। मैडम
0: जी, ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना था तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियो, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की, और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान।

0: सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की

खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है,
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम पहले नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला।
1: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
0: पर बताना तो पड़ेगा ना?
1: पता नहीं।
0: उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू।
1: प्रेम?
0: ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो

होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के एक कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है।

अंजलि एक बार फिर, मम्मा कहती हैं, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहाँ अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की

देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जमा दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा,

और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। ये तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ते पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे, लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उसे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ

रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद के जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे। अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो,

0: अरे तुम फोन भी, लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा, लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना। पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान लबही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

खिड़की से आती हल्की हवा, ढलती हुई धूप और चाय की पहली चुस्की, और इन सब के बीच अगर कुछ अच्छे शब्द आपका साथ निभा दें तो शाम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। दोस्तों, जिंदगी भी शायद शाम जैसी होती है। दिन भर के शोर के बाद कुछ पल अपने हिस्से के सुकून मांगती है, और यही कुछ पल हमें फिर से मुस्कुराना, ठहरना और खुद से मिलना सिखा जाते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है, शाम जब ढलती है तो सिर्फ सूरज नहीं उतरता, दिन भर की थकान भी धीरे धीरे दिल से उतरने लगती है। तो आइए अगले कुछ पल दुनिया की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर देते हैं, कुछ दिलों की बातें करेंगे, कुछ मुस्कुराहटें बांटेंगे और कुछ ऐसे किस्से सुनेंगे जो शायद आपकी शाम को और भी यादगार बना दें। तो मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट रजत, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक हल्की सी मुस्कान के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यकीन मानिए आने वाले कुछ पल सिर्फ सुना ही नहीं देंगे, महसूस भी होंगे। चलिए इस खूबसूरत शाम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी मुश्किल काम में किसी सहकर्मी ने आपकी छोटी सी मदद कर दी हो और पूरा काम आसान लगने लगा हो? या फिर किसी सिंपल से काम में टीम में तालमेल ना होने की वजह से वो एक बोझ की तरह लगने लग गया हो? ऐसा होता है ना। सच्चाई ये दोस्तों कि कार्यस्थल केवल काम करने की जगह नहीं है, बल्कि वो इंसानी रिश्तों का भी एक छोटा सा संसार होता है। वहाँ हम हर दिन कई लोगों के साथ समय बिताते हैं और विचार साझा करते हैं और मिलकर एम्स अचीव करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार ना एक दफ्तर में दो कर्मचारी थे, रोहित और अजय। दोनों मेहनती थे, लेकिन रोहित ना हमेशा अपने काम में अकेले रहना पसंद करता था। उसे लगता था कि दूसरों से मदद लेना या देना समय की बर्बादी है, जबकि दूसरी तरफ अजय अपने साथियों से संवाद बनाए रखता और जरूरत पड़ने पर मदद करता भी और खुद भी सलाह लेता था। अब कुछ महीनों बाद जब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया ना, तो रोहित पर काम का दबाव बढ़ गया। वो तनाव में रहने लगा और वहीं अजय ने अपनी टीम के साथ मिलकर काम बांट लिया, तो सबकी राय ली और समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। अब दोस्तों, इस कहानी से ना हमें एक सिंपल सा मैसेज मिलता है कि जब लोग साथ चलते हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं। और कार्यस्थल पर सहयोग सिर्फ काम पूरा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मेंटल पीस का भी आधार है। जब हम अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं ना, तो तनाव कम होता है और विश्वास बढ़ता है और हमारे काम भी आसान लगने लगते हैं। ज़्यादा आज की तेज रफ्तार दुनिया में अक्सर लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के नए नए तरीके खोजते हैं, लेकिन कई बार सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ना हमारे आसपास ही होता है और हम उसे देख नहीं पाते, और वो होता है एक दूसरे की मदद करना, सम्मान करना और सकारात्मक संवाद यानी पॉजिटिव कन्वर्सेशन करना। ऐसी कन्वर्सेशन जिससे हमारे भी डाउट्स क्लियर हो और सामने वाले का भी काम आसान हो। याद रखिए दोस्तों, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया जानता है। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं ना, तो उनके अनुभवों से भी हम सीखते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, तो न सिर्फ हमारा काम बेटर होता है, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारा व्यक्तित्व भी निखरता है। और सहयोग का मतलब सिर्फ बड़े कामों में मदद करना नहीं होता। कभी कभी किसी का हाल पूछ लेना बस ऐसे ही, या किसी नए साथी को मार्गदर्शन दे देना, या किसी तनावग्रस्त सहकर्मी की बात ध्यान से सुन लेना भी सहयोग का ही रूप है। क्योंकि आखिर में लोग ये याद नहीं करते कि आपने कितना काम किया, वो ये याद रखते हैं कि आपने उनके साथ व्यवहार कैसा किया। तो दोस्तों, आज का ये संवाद हमें यही संदेश देता है कि कार्यस्थल पर सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि सामूहिक प्रयासों से मिलती है। जब टीम में विश्वास, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनता है ना, तब कार्यक्षमता अपने आप बढ़ जाती है और मन भी शांत रहता है। तो दोस्तों, आप भी जब अपने कार्यस्थल या कॉलेज या किसी भी समूह में जाएं, तो एक छोटा सा प्रयास जरूर कीजिए। किसी की मदद कीजिए, किसी की बात को सुनिए और सहयोग का हाथ बढ़ाइए, क्योंकि कार्यस्थल पर सहयोग से ही कार्यक्षमता बढ़ती है।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: दोस्तों, जिंदगी हमें उठाती है, गिराती है, तोड़ती है और कुछ नया जोड़ती भी है। ओवरऑल जिंदगी हमें सिखाती है कि कोई भी सुख या दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर कुछ रहता है तो वो है हमारा धैर्य। धैर्य हमें सिखाता है हर परिस्थिति में शांत रहना और संयम से उन परिस्थितियों का सामना करना। लेकिन कंपैरिजन, कंपटीशन और इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस मुश्किल दौर में धैर्य बनाए रखना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है ना? लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति का दिया हुआ एक ऐसा वरदान हमारे पास है जिसका उपयोग करके हम धैर्य सीख ही जाते हैं, और वो है योग। जी हाँ दोस्तों, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीने का एक ढंग है। तो चलिए आज युवाओं के जीवन पर योग किस तरह अंतर ला रहा है जानते हैं प्रतिदिन योग करने वाले हमारे एक युवा साथी से। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम युवाणी में। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को भी दे दीजिए।
1: जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। मेरा नाम रक्षित प्रजापति, मैं 20 वर्षीय युवा हूँ। पिछले 4 वर्ष से बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 4 वर्ष से पढ़ाई कर रहा हूँ। स्टूडेंट हूँ और कोटा में रहता हूँ, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की भी साथ साथ तैयारी करता रहता हूँ।
0: तो योग से आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
1: योग मेरे पिताजी भी किया करते थे।
0: अच्छा।
1: और ये कोटा में आके मैं थोड़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी और वही टाइम नहीं मिल पाना, तो ऐसे में मतलब से दूर हो गया। फिर थोड़े समय बाद मुझे फिजिकल और मेंटल कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, तो फिर मैंने वापस योग की तरफ रुख किया।
0: अच्छा, तो आपको पता है कि आपने जो पहला अपना योगा सेशन लिया था वो कब लिया था और उसके बाद आपको कैसा फील हुआ था?
1: जी, मैंने पहला योगा सेशन अपना लगभग 1 वर्ष पहले लिया। मैं गया था, अपने पास में योगा टीचर हैं उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा कि आपको शुरुआत करनी चाहिए 30-25 मिनट से। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे स्लॉट बताया अपने बैचेस के, फिर मैंने सुबह वाला चुना और मैं गया। पहले दिन जब मैं गया तो मेरे को वही विचार आते रहते थे कि मैं कंपटीशन के और टाइम मैनेजमेंट के, पर फिर भी मैं गया और थोड़ा भारीपन फील हो रहा था। पर जब मैं गया, वहाँ बैठा, वहाँ का वातावरण देखा, वहाँ और भी लोग आए हुए थे, बड़े बूढ़े बच्चे सब प्रकार के, फिर बैठा तो कुछ उन्होंने प्रक्रियाएं बताई, योगिक क्रियाएं बताई। वो योगिक क्रियाएं मुझे पिताजी ने बताई हुई थी, वो मुझे यादें ताजा भी हुई मेरी। और फिर जब वो योगिक क्रियाएं मैंने की तो उसके दौरान ही मुझे लगने लग गया कि कुछ भारीपन मेरा हट रहा है, हल्की सी फीलिंग आ रही है। और धीरे धीरे जब वो योगा सेशन खत्म हुआ तो लगभग विचार कम ही हो गए थे मेरे, बहुत कम हो गए थे विचार, शून्यता टाइप वाली चीज वैसा हो गया था।
0: और विचारों का जो बोझ होता है वो
1: घट गया था। और मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो हल्का महसूस कर रहा था।
0: बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने बताया कि आप भी एक विद्यार्थी हैं और कंपटीशन परीक्षाएं होती है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी है जो अपनी अलग अलग फील्ड में अलग अलग अपने कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, तो एक विद्यार्थी के लिए आपकी जो दिनचर्या होती है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ज्यादा व्यस्त होती है, तो इसके बीच आप योग करने के लिए समय कैसे निकालते हैं?
1: जी, मैंने बताया ना कि मतलब मैं भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था, वही सोशल मीडिया और अपने कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो लगता नहीं मिल पाता था। पर फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई तो मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सलाह दी कि आप योगिक क्रियाएं किया कीजिए। तो फिर मैंने सोचा कि निकाल लेंगे, थोड़े टाइम मैंने सोचा, पर फिर वही टाइम निकल गया। फिर वापस मैंने कहा कि शुरू तो करते हैं, शुरू करने से ही होगा, क्योंकि अपने पास भी 24 घंटे ही है और बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे ही है। अब वो कैसे टाइम मैनेज करना है वो अपने ऊपर है। अब इसके लिए अपने को जल्दी उठना, जल्दी उठना आपके मतलब पूरे दिन के रूटीन को एक अच्छा कर देता है कि मतलब इसके बाद ये और जो काम होते रहते हैं तो अपने आप एक मोटिवेशन भी आता है कि हाँ ये काम भी मैंने कर लिया, आज का काम प्रोडक्टिव था, आज मैंने योग भी किया, चलो मतलब रुआसा दिन नहीं गुजरा, नीरस नीरा दिन अलग अलग चीजें करने से, तो टाइम तो निकल जाता है। अगर टाइम निकालें तो 15 मिनट निकालेंगे, रोज 15 मिनट निकालो, धीरे धीरे वो 15 मिनट

0: एक घंटे में तब्दील हो ही जाते हैं।
1: मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर शुरुआत भले ही 10 मिनट 15 मिनट से करें, हाँ, लेकिन उसको फिर हमें निरंतरता में बनाए रखना चाहिए। और एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि दिनचर्या में पढ़ाई, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कॉम्पिटिशन की तैयारी, इन सब में बहुत ज्यादा वक्त चला जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा वक्त आया होगा जब आपका मन किया होगा कि अरे योग छोड़ देता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने इस विचार से कैसे अपने आप को उभारा है?
0: ऐसा मेरे मन में तो कुछ आया नहीं था, पर क्या कुछ महीने पूछे 7 महीने बाद जब मैं करता था

0: कम से कम 15-20 दिन का या शायद ज्यादा गैप आ गया मेरे, पर फिर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि ऐसे कहाँ तक चलेगा, वापस उसी प्रक्रिया में आना चाहिए मुझे, ताकि वही प्रोडक्टिव काम हो, वही एकाग्रता वापस ला पाऊं मैं जो पहले रहा करती थी। तो इसलिए मैंने वापस आना शुरू कर दिया योगा सेंटर। फिर मैं पिछले 6-7 महीने से लगातार आ रहा हूँ
1: और योग कर रहे हैं।
0: योग
1: मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको योगासन का सबसे अच्छा आसन कौन सा लगा और उसमें आपको क्या खास बात लगी?
0: अरे वाह, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न। मुझे सबसे अच्छा लगता है वज्रासन। वज्रासन में एक खास बात ये है कि मतलब उसे खाना खाने के बाद भी कर सकते, और जरूरी है खाना खाने के बाद ही करो।
1: बिल्कुल सही।
0: बस ऐसे पैरों को सिकोड़ के बैठ जाओ और 5 मिनट तक बैठे रहो, 10 मिनट तक बैठे रहो, और उसमें बैठने में क्या है, बैठे तो रहना है, कुछ भी करो।
1: आजकल के समय में जो तनाव है और परीक्षा का दबाव है और सोशल मीडिया, इन सब की वजह से बहुत ज्यादा हमारा दिमाग स्ट्रेस में हो जाता है, तो ऐसे में हम योग करके इन समस्याओं से कैसे निपट सकते?
0: जी, योग मात्र कोई फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही नहीं।
1: योग बहुत अच्छी बात है,
0: हमारा संपूर्ण विकास करता है। जैसे पतंजलि जी ने जो योग का अर्थ दिया है, युग से दिया है, मतलब युग का मतलब है जुड़ जाना, मतलब आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना, इतना ऊंचा अर्थ देना उस चीज को। तो अपने यहाँ तो मतलब बहुत प्राचीन प्रचलित पारंपरिक चीज चली आ रही है योग। भारत ने इसको उत्पन्न किया है और इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है जिसे अष्टांग योग कहते हैं। तो उसमें वो सब चीजें हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक।
1: अरे वाह, मतलब आपको तो पूरा ही याद है, एक बार आप दोहरा देंगे इसको ताकि हमारे श्रोता इसको अच्छे से सुन पाए, इसमें मतलब क्या क्या होता है?
0: जी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये तो अष्टांग योग है। और यम के अंदर आते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह आदि चीजें, नियम के अंदर सोच संतोष ताप तप और दया आदि के भाव, और आसन के अंदर जो अपन आसन करते हैं वज्रासन पद्मासन ऐसे जो सारे आसन है, सुखासन शवासन ये सारे आसन इसके अंदर आते। प्राणायाम में अपन पूरक कुंभक रेचक आदि क्रियाओं द्वारा श्वसन करते हैं, तो वो हमारी श्वसन क्रिया को बढ़ाता है। प्रत्याहार आहार से जुड़ी हुई चीज है, सात्विक भोजन संतुलित भोजन धारणा, इसमें क्या होता है कि जो अपना मूलाधार है, मूलाधार से लेकर जो अपना मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है वहां तक को ध्यान में रख के एक प्रक्रिया निभाई जाती है।
1: अच्छा।
0: फिर ध्यान ध्यान लगाना, सांसों पर ध्यान लगाना, अपन जो कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाना, अपना कार्य सही है गलत है इस पर भी ध्यान रखना, और समाधि तो फिर अंतिम है।
1: अच्छा।
0: समाधि सब कुछ पूर्णता उसमें प्राप्त हो जाती है समाधि में। तो ये जो सारी चीजें हैं इस योग की इस प्रक्रिया में ही अपन मतलब बहुत कुछ सीख जाते हैं, और ये जो मेंटल स्ट्रेस ये चीजें तो बहुत एकदम नगण्य सी लगने लग जाती है, ये तो कुछ है ही नहीं उसके सामने, वो तो एकदम खत्म हो जाती है।
1: मतलब योग करने से हमारा जो मेंटल स्ट्रेस होता है और जो हमें जो लगता है कि हमारी समस्याएं वो समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती है,
0: बहुत तक या ऐसे कहो कि पूरी तरह खत्म हो जाती
1: है। मैंने भी ऐसा देखा है कि लोग जो है ना योग को केवल एक शारीरिक व्यायाम के रूप में देखते हैं, कि अलग अलग कर अलग अलग जो आसन होते हैं तो उनको योग समझते हैं, लेकिन असली में वैसा होता नहीं है। योग
0: उससे भी बड़ी चीज है, मतलब आसन तो केवल उसका एक भाग ही है। देखो तीसरा वाला भाग आसन बता रहे हैं, तो वो भाग ही है केवल उसका।
1: तो हम कह सकते हैं कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक ढंग है।
0: ये एकदम सही बात
1: जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है। और कुछ युवा ऐसा भी मानते हैं कि जो योग है वो खेल कूद या जिम जितना रोचक नहीं है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
0: क्या है कि युवाओं में एक ये है कि जो वो दिखता है कि एक्सप्लोजिव गतिविधियां उसकी ऐसी है, मतलब बाहरी ढंग जो उसका ऐसा है तो वो अंदर से भी अच्छा ही होगा, पर ये जरूरी नहीं होता। योग आंतरिक रूप से कार्य करता है।
1: अच्छा।
0: तो अंतर मन में जो मतलब अपने को प्रेरणा देता है कुछ कार्य करने की, हमारे कन्फ्लिक्ट को मिटाने की, हमारे मस्तिष्क में आने वाले विचारों के द्वंद को समेटने की।
1: तो रक्षित हमें ये बताइए कि अगर कोई जो स्टूडेंट है वो योग शुरू करना चाहता है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे शुरू करें?
0: जी, सबसे पहले तो अपना टाइम निर्धारित करें। ऐसे भी टाइम मैनेजमेंट के कारण वो कर नहीं पा रहे हैं टाइम मैनेज, तो सबसे पहले अपना टाइम निर्धारित करें कि उन्हें सुबह करना है शाम करना है। सबसे अच्छा है कि सुबह के टाइम पे करें।
1: अच्छा।
0: और शाम को अगर हो पाए तो खाना खाने के पहले कर लें, या फिर खाना खाने के बाद करना हो तो 3 से 4 घंटे बाद शुरू करें। सुबह का टाइम सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि वातावरण सही रहता है।
1: हाँ।
0: और जब अगर सुबह ही अपन ये काम कर लेते हैं तो दिन प्रोडक्टिव बना रहता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो हमारी पीढ़ी है ना, वो आप समझते ही हो कि मतलब वो जल्दी से कुछ पाना चाहती है।
1: हाँ।
0: उन्हें सब हाथों हाथ चाहिए, उन्हें जो भी मतलब कि उन्हें जो भी परिणाम चाहिए, उनके फिजिकल मेंटली जो भी परिणाम चाहिए वो जल्दी चाहिए उन्हें।
1: हाँ।
0: तो इससे बचे हों, दौड़े

0: नहीं भागे नहीं इसके पीछे। और सबसे पहले है कि कॉम्प्लेक्स आसन नहीं करें उसके लिए। अपन क्या है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आसन कर रहे हैं, जैसे शीर्षासन कर रहे हैं, अष्टावक्र आसन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आसन नहीं करने चाहिए। धीरे धीरे अपने शरीर की एबिलिटी को पहचानना चाहिए, उसके अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। और धीरे धीरे करने से आती है वो लचीलापन, धीरे धीरे करने से आता है। जैसे मेरे योगा टीचर ने बताया कि भाई 30 मिनट से शुरुआत करें, तो ऐसे ये भी 10 मिनट से 20 मिनट से जितना भी हो सके वैसे शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें तो वो अच्छा रहता है।
1: और मतलब आपने बहुत बार अभी जिक्र किया कि भले ही 10 मिनट या 15 मिनट से स्टार्ट करें, तो क्या मानते हैं कि डेली केवल 10-15 मिनट का योग भी अगर कोई व्यक्ति करे तो इससे भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है उसके जीवन में?
0: जी हाँ, योग से बदलाव तो 10 मिनट में भी आ जाएगा, पर मैं तो चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर करें, थोड़ी देर, इतना निकल ही आता है टाइम, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें। 10-15 मिनट 20 मिनट अगर करें तो अच्छा रहेगा, पर अगर 10-15 मिनट ही हो पा रहा है तो फिर करें। और क्योंकि 24 घंटा इतना लंबा समय है, सोना, बैठना, उठना, खाना, अपन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, वही विचार अपने अंदर चलते रहते हैं, तो उन विचारों को निकालने के लिए, उनसे विशुद्ध होने के लिए थोड़ा टाइम तो देना चाहिए।
1: तो आपको क्या लगता है कि योग करने से जो युवा है वो आत्मविश्वासी और अनुशासित कैसे बनते हैं?
0: जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आत्मविश्वास करने से आता है। जैसे अपन कोई चीज करते हैं, अपन बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं अपना, या अपन एक साथ बहुत सारा बना लेते हैं कि भाई ये कर लें, वो कर लें, पर एक बार तो अपन कर लेते हैं, किसी दिन पढ़ लिया कि 18 घंटे किसी दिन पढ़ लिया, पर फिर 3 दिन तक कुछ ही नहीं किया, तो उससे अच्छा है कि हम धीरे धीरे करें। तो योग हमारे अंदर वही एकाग्रता का भाव लाता है कि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलें। और जो हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, हमारे कंपटीशन को लेकर, माता पिता की एक्सपेक्टेशन को लेकर, और जो दोस्त हमारे ऐसा लगता है कि हमसे आगे निकल रहे हैं, तो वो अपने अंदर थोड़ा हीनता की भावना आती रहती है,
1: क्योंकि ऐसी भावनाएं आजकल युवाओं में बहुत देखने को मिल रही है।
0: तो इन्हीं सब दुर्भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए और मस्तिष्क को शांत करने के लिए, ताकि हम एकाग्रचित से पढ़ाई में या जो भी अपना कार्य है उसे कर पाए और दिन की प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से फील हो।
1: तो रक्षित, हमारी बातचीत में आपने प्रोडक्टिविटी शब्द का बहुत ज्यादा यूज किया है, तो आपके जीवन में प्रोडक्टिविटी योग करने से किस प्रकार बढ़ी है या बदली है?
0: देखिए, योग से ही हमारे मतलब जो दुर्भावनाएं आती है उन पर, हमारे विचारों पर कंट्रोल होता है। पहले क्या है कि मैं बहुत सोचता था इस चीज में कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत चीजों में मतलब स्किल सीखने के लिए दौड़ता था या किसी चीज के लिए भाग, मतलब क्या है कि मतलब इसको भी कर लूँ, उसको भी कर लूँ, तो पर मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा था उनको, मेरे अंदर वो चीज आ नहीं पा रही थी और ऐसा लगता था कि कुछ ही नहीं हो पा रहा। एक फिर वो नहीं होने से एक हीन भावना आ जाती, फिर वो एक तनाव पैदा हो जाता। अब इन्हीं सब को कंट्रोल करने के लिए फिर मैं योग जब जाने लगा, तो योग से आने के बाद मेरे इन सब विचारों पर मैंने देखा कि अपने आप मतलब एक कंट्रोल आने लग गया है, और जो टाइम नहीं मिल पा रहा था वो टाइम भी मिलने लग गया है, और मैं अपनी स्किल्स पर भी ध्यान दे पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई पर भी ध्यान दे पा रहा हूँ, और तो और मैं अपने जो सोशली व्यवहार है मतलब दोस्तों से वो भी अच्छे से निभा रहा हूँ, तो मेरे अंदर कुछ ज्यादा स्ट्रेस आता भी नहीं है। अब अगर स्ट्रेस आता भी है तो भी उसको किसे कंट्रोल करना है वो भी मैं सीख चुका हूँ।
1: तो रक्षित, अब मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे युवा श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहें योग के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई शारीरिक क्रिया ही नहीं करते हो, किसी प्रकार का मेंटली आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये धीरे धीरे आपके ही शरीर को कुंद कर रहा है। मतलब आप धीरे धीरे खुद ही महसूस करोगे कि आपकी जो पुरानी एबिलिटीज थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही, और अगर आप इनको वापस लाना चाहते हो या फिर मतलब इनको और बढ़ोतरी करके देखना चाहते हो,
1: बिल्कुल,
0: तो इसके लिए योग बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ यदि आप जिम वगैरह खेलकूद वगैरह भी करते हो तो भी साथ में योग के लिए जरूर थोड़ा टाइम निकालें। आपको आंतरिक दृढ़ता देता है, ये आंतरिक दृढ़ता आपका बेहतरीन प्रेरणा स्रोत बनती है, जो आपको लॉन्ग टर्म एम्स जो होते हैं, जैसे कोई कंपटीशन, सरकारी नौकरी की कोई तैयारी है, तो किसी में बहुत लंबे वर्षों तक रहना पड़ता है, जैसे यूपीएससी, जिनमें मतलब छोटे छोटे माइलस्टोन बनाने होते हैं, और लंबा चलना है मतलब, तो उनके लिए योग बहुत जरूरी है।
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित, हमसे अपने विचार साझा करने के लिए, और मुझे आशा है कि हमारे युवा श्रोताओं को भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ श्रोता होंगे जो इसको शुरू भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद,
0: मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद,
1: आपको शुभकामनाएं।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रक्षित एच प्रजापति का योग पर विचार, कि योग किस प्रकार युवाओं के जो आत्मविश्वास होता है और धैर्य होता है उसमें अंतर ला सकता है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी मिस्टीरियस जगह हैं जो सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और यात्रियों को हैरान करती रही है। आज के हमारे सेगमेंट विश्व अटल से में हम आपको ले चलेंगे दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में, जहां रेगिस्तान की धरती पर बनी है एक ऐसी अनोखी पहेली जिसे दुनिया नाजका रेखाएं या नाजका लाइन के नाम से जानती है। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए एक विशाल रेगिस्तान जहां धरती पर कई किलोमीटर सीधी रेखाएं बनी हो। कहीं एक विशाल हमिंगबर्ड दिखाई देता है, कहीं मकड़ी, तो कहीं बंदर, तो कहीं रहस्यमयी ज्यामितीय आकृतियां। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन आकृतियों को जमीन पर खड़े होकर पूरी तरह तो देखा ही नहीं जा सकता। इनकी वास्तविक सुंदरता और आकार आसमान से देखने पर ही समझ में आते हैं। दोस्तों, नाजका रेखाएं पेरू के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को के अनुसार ये क्षेत्र लगभग 450 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ के ज्यादातर भूचित्र यानी जियोग्लिफ्स लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाए गए थे और यही कारण है कि इन्हें प्राचीन मानव सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों में गिना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इन्हें बनाया कैसे गया। दोस्तों, असल में यहाँ की लाल और काली रंग की ऊपरी मिट्टी को हटाकर नीचे की असली मिट्टी को या हल्की मिट्टी को उजागर किया गया था और इसी तकनीक से विशाल आकृतियां बनाई गई। इस क्षेत्र की अत्यंत शुष्क जलवायु और कम वर्षा होने के कारण इन्हें हजार वर्षों से सुरक्षित रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन्हें बनाया क्यों गया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये विशाल खगोलीय कैलेंडर हो सकते हैं और वहीं हाल ही के कई अध्ययनों की माने तो इनका संबंध धार्मिक अनुष्ठानों और जल से जुड़ी प्रार्थनाओं से भी हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, नाजका क्षेत्र दुनिया की सबसे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में से एक है और इसीलिए जल यहाँ के जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और एक और बात आपको बता दूं कि इस रहस्य की खोज भी कम रोचक नहीं है। बात है साल 1927 की। 1927 में पेरू के पुरातत्वविद टोरीबियो मेजिया जेस्पे ने इस रेखाओं को पहाड़ियों से देखा था और बाद

में 1940 के दशक में अमेरिकी शोधकर्ता पॉल कोसॉक और जर्मन गणितज्ञ मारिया राइखे ने इसका विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया और पूरी दुनिया का ध्यान इनकी ओर आकर्षित कर दिया। और दोस्तों, अब एक फन फैक्ट की भी बारी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी अब नाज़का रेखाओं का रहस्य सुलझाने में मदद कर रही है। हाल ही के शोधों में वैज्ञानिकों ने AI और ड्रोन तकनीक की सहायता से 300 से भी अधिक नई आकृतियों की पहचान की है, जिनमें कई मानव और पशु आकृतियां भी शामिल है। जरा सोचिए दोस्तों, लगभग 2000 साल पहले बनाई गई आकृतियां या रेखाएं आज भी आधुनिक तकनीक को नई खोजों के लिए प्रेरित कर रही है। दोस्तों, नाज़का रेखाएं हमें ये सिखाती है कि मानव कल्पना और सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी इतिहास अपने सबसे बड़े रहस्य धरती की सतह पर ही लिख देता है और हम उन्हें समझने में सदियां लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछकर प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहूँगा। जब आप सुबह स्कूल जाते हुए बच्चों को खेलते, हंसते और अपने दोस्तों के साथ बातें करते देखते हैं तो कैसा लगता है? शायद मन में एक सुकून आता है कि बच्चे अपना बचपन पूरी खूबसूरती के साथ जी रहे हैं, है ना? लेकिन अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर उसी उम्र का कोई बच्चा स्कूल बैग की जगह भारी बोझ उठाए, किताबों की जगह बर्तन माँज रहा हो या खेल के मैदान की जगह किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, तो ये सोचकर मन कहीं ना कहीं बेचैन हो जाता है, है ना? क्योंकि बचपन का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ नहीं बल्कि सपनों की उड़ान होनी चाहिए। इसीलिए आज के हमारे सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर में हम बात करेंगे बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस की, जो हर साल 12 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में राजवीर नाम का बच्चा था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और इसीलिए वो पढ़ाई छोड़कर एक छोटी दुकान पर काम करने लगा। लेकिन उसके शिक्षक ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसके परिवार को समझाया, मदद की व्यवस्था की और राजवीर को फिर से स्कूल भेजा। और दोस्तों, सालों बाद वही राजवीर एक शिक्षक बना और उसने अपने गांव के कई बच्चों को शिक्षा से जोड़ा। ये कहानी हमें बताती है कि एक बच्चे को अवसर मिल जाए तो वो सिर्फ अपनी नहीं, कई और जिंदगियां भी बदल सकता है। और दोस्तों, बात करें अगर कुछ तथ्यों की, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने साल 2002 में बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में बाल श्रम की समस्या के लिए जागरूकता बढ़ाना और इसे समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करना था। दोस्तों, ILO और यूनिसेफ की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अभी भी लगभग 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से लगभग 5.4 करोड़ बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। ये ऐसे काम हैं जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य तक को भी प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये संकल्प लिया गया था कि बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाए। और दोस्तों, बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर और ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब एक बच्चा काम करने को मजबूर होता है ना, तो सिर्फ उसका वर्तमान नहीं, उसका भविष्य भी प्रभावित हो जाता है, उससे छीना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब दुनिया भर में सरकारें, सामाजिक संगठन, शिक्षक और आम नागरिक मिलकर इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों,

बदलाव की शुरुआत हम अपने आसपास से भी कर सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करें या बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाएं, तो ये एक छोटा सा कदम भी किसी बच्चे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, याद रखिए, हर बच्चे के हाथ में किताब अच्छी लगती है, औजार नहीं। हर बच्चे की आंखों में सपने अच्छे लगते हैं, मजबूरियां नहीं। तो आइए हम सब मिलकर इस बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस पर ये संकल्प लें कि हर बच्चे को उसका अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और एक खुशहाल बचपन का अधिकार।

तो दोस्तों अब बारी है कुछ करंट अफेयर्स की। असम की प्रसिद्ध और भौगोलिक संकेतक जीआई टैग्ड प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप को एपीईडीए द्वारा दुबई निर्यात किया गया। जून 2026 तक ग्रामीण भारत में नल के पानी का कनेक्शन 81.94% यानी ग्रामीण परिवारों 15.86 करोड़ घरों तक पहुंच गया है, जो 2019 में केवल 17% था, यानी जल जीवन मिशन की प्रगति हो रही है। रेलवे कवच 4.0 की स्थिति की बात करें तो भारतीय रेलवे की टक्कर रोधी सुरक्षा प्रणाली कवच संस्करण 4.0 को 3,103 रूट किलोमीटर और 4,277 इंजनों पर तैनात किया जा चुका है। इसके परिणाम स्वरूप देश में रेल दुर्घटनाएं घटकर न्यूनतम स्तर पर आ गई है। मालाबार बॉटनिकल गार्डन के सहयोग से आक्रामक पौधों की पहचान करने वाला एआई ऐप नियोफाइथिल आईडी बनाने के लिए भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक एन अलीम यूसुफ को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है।

तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी छोटी सी मुलाकात आपकी शाम में कुछ सुकून, कुछ मुस्कान और कुछ अच्छे ख्याल ज़रूर छोड़ कर गई होगी। चलते चलते बस इतना सा कहना चाहूँगा कि हर शाम अपने साथ एक संदेश लाती है। जो बीत गया उसे सुकून से विदा कीजिए और जो आने वाला है उसका दिल खोलकर स्वागत कीजिए। अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, अपनी मुस्कान संभाल कर रखिए और खुद का ख्याल रखना कभी मत भूलिए। इसी उम्मीद के साथ कि फिर जल्द ही इसी वक्त इसी फ्रिक्वेंसी पर आपसे मुलाकात होगी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप थे हमारे साथ, सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम, जहाँ पे मैं था आपके साथ रजत। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ

0: आने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत एआई मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत एआई मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की एआई यात्रा में महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर, 1413 किलोहर्ट्ज पर यह प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म परिणीता से।

श्रोताओं, फिल्म परिणीता से अभी ये गीत आपने सुना, और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत में अगला गीत, फिल्म दो लफ्जों की कहानी से अरमान मलिक की आवाज में। शब्द रचना मनोज मुंतशिर की और संगीत अमाल मलिक का।

0: श्रुतम फिल्म संगीत में अभी आपने सुना फिल्म दो लफ्जों की कहानी से ये गीत। अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं

0: ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और यूट्यूब लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में अगला गीत, जिसे हमने लिया है साधना सरगम की आवाज में फिल्म साथिया से। गीत के बोल गुलजार के और संगीत AR रहमान का।

और लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज से, आवाज अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, फिल्म राज के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 102.3.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे

0: के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण के आधारशिला बताया है। आज देशभर में महिला नेतृत्व वाले विकास के सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियाँ महिलाओं को सम्मान देने और सशक्तिकरण के लिए है। इससे महिलाएं आज विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और नवाचार के क्षेत्रों में नई उड़ान भर रही हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में भी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं।
0: प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में हुई इस कार्यशाला में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने किसानों से कहा कि वे रसायन मुक्त अनाज तैयार करें, इस प्रकार के अनाज से कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती के कारण आज देशभर में खेतों की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन निचले स्तर पर पहुंचना चिंताजनक है। उन्होंने सूक्ष्म जीव और मित्र कीट द्वारा मिट्टी को मुलायम करने और उर्वरकता बढ़ाने की पद्धति पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों ने पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग जैसे प्राकृतिक खेती के तरीकों से मानव और मिट्टी दोनों की सेहत का ध्यान रखा है, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती माता को जहरीले रसायन और कीटनाशकों से नुकसान होता है।
2: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी, वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें की डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके उस पर डाल देते थे, चार दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से या हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
0: बूंदी

0: जिले की केशव राय पाटन, तालेड़ा और हिंदोली पंचायत समितियों में कामकाज में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बीडीओ सहित 11 कामकाज अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर ये व्यापक कार्रवाई की गई। इन ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि श्री दिलावर ने हाल ही में इन पंचायतों का औचक निरीक्षण किया था। नीट यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा की अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यह बदलाव करते हुए बताया कि अब परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा। इधर राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 का आयोजन इस साल 6 सितंबर को किया जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 14 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि इस बार ये परीक्षा 35 विषयों में आयोजित होगी। इसमें राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, फारसी और उर्दू 5 नए विषय शामिल किए गए हैं। प्रदेश में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। इनके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगम तरीके से दिया जाएगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों के माध्यम से मौके पर ही विभिन्न विभागों से जुड़े काम किए जाएंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया और लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बैरवा आज जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्ययोजना क्रियान्विति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रोत्साहन राशि के साथ आवश्यक उपकरण भी देने को कहा। डॉ. बैरवा ने लोगों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों की नियमित फिटनेस जांच करवाने और चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर भी जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने युवा पीढ़ी से हर तरह के नशे से दूर रहने की अपील की है। श्री अठावले आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नशे से समाज के हर तबके को नुकसान होता है। उन्होंने समारोह में सभी लोगों से अपने आसपास मौजूद नशा करने वालों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। जातिगत जनगणना को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। तब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है भी जानकारी मिलेगी, और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का SC ST को ओबीसी को फायदा मिला है, और उनको जिनके पास खेती है, जिनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: आज बाल श्रम निषेध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। देश में भी कृषि, होटल उद्योग, ईंट भट्टों, पटाखा निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाखों बच्चे काम कर रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक समस्या और सामाजिक विषमता को जिम्मेदार बताया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस के

0: मौके पर करौली में बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान में 12 जुलाई तक सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां होगी। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने और बाल विवाह की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। उधर पाली के सुमेरपुर में एक बच्ची को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। और अब मौसम संबंधी जानकारी। राज्य में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली और हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में आज ओले भी गिरे। उधर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हीटवेव चली और गर्म रात्रि रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आंधी बारिश की गतिविधियों में आज से बढ़ोतरी के आसार है। बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभागों के कुछ भाग में गरज के साथ मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंधी बारिश की गतिविधियां 16 जून तक जारी रह सकती हैं।
1: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान कुछ स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले एक दो दिन पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: राजधानी जयपुर में किराए पर वाहन उपलब्ध करवाने वाली रेंट अ कैब और बाइक रेंटल सेवाओं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ राजीव पचार ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों के लिए किराए के वाहनों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ये सख्ती की गई है। उन्होंने बताया कि कई व्यक्तियों और फर्मों की बगैर पंजीकरण के ही वाहन किराए पर देने की शिकायतें सामने आई हैं। श्री पचार ने बताया कि किराए पर वाहन देने के लिए परिवहन विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी रेंटल फर्मों को अपने कार्मिकों का पुलिस सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, वहीं पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। सीकर अपनी हवेलियों, बाटिक कला और धार्मिक स्थलों के साथ साथ शौर्य के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। इसी पहचान के साथ जिले की चिट्ठी की शुरुआत करते हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं और बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों से अपने सैन्य और नागरिक दस्तावेजों की जांच कराने का आग्रह किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल बिजेंद्र सिंह महला ने बताया कि नाम, नाम की वर्तनी, जन्म तिथि तथा पारिवारिक विवरण में अंतर होने के कारण पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शैक्षणिक सुविधाओं और अन्य देय लाभों में कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जन आधार, राशन कार्ड तथा अन्य अभिलेखों का मिलान करने और आवश्यकता होने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर संशोधन करवाने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल पीड़ित दिवस के अवसर पर सीकर के राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और

0: किशोर न्याय बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बालश्रम, मानव तस्करी और शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में किशोरों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीवन जीने तथा भविष्य में अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे स्टेशन, बड़ा तालाब, मारू पार्क सहित कई स्थानों पर लोगों को तंबाकू और नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। स्काउट गाइड के सदस्यों ने नृत्य, नाटिका, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर फतेहपुर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महावारी स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रबंधन और एनीमिया की रोकथाम की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि महावारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इससे जुड़े भ्रम तथा सामाजिक वर्जनाओं को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित भोजन लेने और आयरन युक्त आहार अपनाने की सलाह दी गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में शहरी निकायों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से उड़ान 10 समर कैंप में महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। कैंप में हस्तकला, कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई, योग, नृत्य और अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन सेवाओं, लाडो प्रोत्साहन योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आमजन से कपड़े और जूट के थैलों का उपयोग करने की अपील की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत नगर परिषद द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। जयपुर रोड से बाईपास तक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए। नगर परिषद ने व्यापारियों और संस्थानों से सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने तथा नियमों की पालना करने का आग्रह किया है। सीकर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, सरकार लारला 12 साल माए महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती न बधावो देवन सारू जयपुर माए राज्य स्तरीय कार्यशाला राखी जी। राज्य सरकार सड़का माथे हिफाजत न जन आंदोलन बनावन सारू भेड़ी जिम्मेदारी सागे काम करन री अपील कीनी। और प्रदेश रा उगनी हलका माए गरज चमक सागे बरसात, आतुनी हलका माए लू रो कोप। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि केंद्र सरकार लारला 12 साल माए देश बनावन रा काम माए महिलावारी पूरा बूता सागे भागीदारी रो एहसास करावन बाबत अनुकूल वातावरण तैयार किन्नो है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि हर हलका माए महिलावारी मौजूदगी नजर आ रही है। पेश है समाचार कक्ष सालेहा गाजीरी रपट।
2: प्रधानमंत्री संस्कृत श्लोक रो जिक्र करता थका महिलावा ने देश बनावण री नींव बताई। आज देश भर में महिलावा री अगुवाई में विकास रा बेहतर नतीजा साफ निजर आ रहा है। स्वयं सहायता समूह रे जरिए गावाई हलका री महिलावा ने ई माली तौरू खुदरे पाण उबी करी जा रही है और केंद्र सरकार री नीतियां महिलावा रो मान बधावण अर वा ने मजबूत बनावण सारू है। इणु महिलावा विज्ञान अंतरिक्ष

0: खेल और नवाचारा रा हल्का माए खूब आगे बढ़ रही है। केंद्र माए एनडीए रा राजरा 12 साल पूरा वेवन रा सिलसिला माए राज्य माई 3 दिन ताई प्रदर्शनियां लगाई जा रही है।
1: केंद्र सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निवेश प्लेटफॉर्म रो प्रचार करता था का बतावन वाला वीडियो ने फर्जी बतायो है। पत्र सूचना कार्यालय रिफैक्ट चेक इकाई वीडियो ने गलत बताता था का कहो का इन माय 22,000 रुपया रा निवेश मा था, रोजीना 80,000 और हर महीना 24,00,000 रुपया मिलन रो दावो करीचियो है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई रे मुजब ओ वीडियो एआईयू बनाईचियो है। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू आज जयपुर माए प्रदेश स्तर री प्राकृतिक खेती कार्यशाला और मल्लखंब प्रदर्शन राखीचियो। इनमाए राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानाओं कीड़ा मारण री रासायनिक दवाइयां कम काम लेवण और प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। श्री बागड़े किसानों रसायन काम लिया बगैर अनाज उपजार जनता ने बीमारियां बचावण माए मदद करण री अरज कीनी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो का किसान पंचगव्य जीवामृत बीजामृत और मल्चिंग सरीखा प्राकृतिक खेती रा तरीकाओं इंसान और मिट्टी दोनों री सेहत रो ध्यान रखे है। मुख्यमंत्री कहो के मौजूदा दौर में रासायनिक खाद मोटी तादाद में काम लेवाणु मिट्टी रो स्वास्थ्य खराब भी है।
2: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें ई डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके उस पर डाल देते थे, 4 दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से या हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
1: श्री शर्मा कहो कि किसानों री बरकत सारू राज्य सरकार पानी और बिजली री उपलब्धता तय करण री विगतवार योजना बनाई है। ई मौके गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत कहो कि रासायनिक खेती रा कारण खेता माए मिट्टी माए ऑर्गेनिक कार्बन घणो कम वेक्यो है। बूंदी जिलारी केशव राय पाटन तालेड़ा और हिंडोली पंचायत समितियां रा कामकाज माए लापरवाही रा आरोप माए बीडीओ और 11 ग्राम विकास अधिकारियां ने मुअत्तल कर दिया चिया है। आ ग्राम विकास अधिकारियां रे खिलाफ 16 CCA रा तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करण रा हुक्म दिया चिया है। प्रदेश माए आज शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर शुरू भया। 15 जुलाई तक चलन वाला आ शिविरां रे जरिए लोगां ने न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो आसानी उंदी उचारियो है और न्यारा न्यारा महकमाओं जुड़िया काम मौके ही निपटाया जा रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माए शहरी सेवा शिविर री शुरुआत कीनी। ई मौके वे लोगाओं शिविर माए मुहैया कराया जा रहा सुविधाओं की जानकारी लीनी और जमीरा पट्टा दीना। मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू 21 जून ने ओजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा माए अब विद्यार्थियों ने 15 मिनट बत्ता मिलेला। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए रे मुजब अब 195 मिनट री आ परीक्षा दोपहर पाछे 2 बजाऊ सिंजा 5:15 तक ली जावेला। दूजीगानी कोटा विश्वविद्यालय री ओरू राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सैट 2026 ई साल 6 सितंबर न ली जावेला। इसारू 14 जून और 15 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकाओ अर्जी दी जा सकेला। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत बतायो के इन दफा आ परीक्षा राजस्थानी सिंधी पंजाबी फारसी और उर्दू समेत 35 विषया माए ली जावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा सड़का माथे हिफाजत न जनता रो आंदोलन बनावण सारू सगलाओं जिम्मेदारी सागे काम करण बाबत कहो है। वे आज जयपुर माए स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल री मीटिंग माए बोल रहा है। उप मुख्यमंत्री सड़का माथे हिफाजत रा जतन असरदार तरीकाओं करण सड़क हादसा री जदमाए आवण वाला ने तुरंत मदद और बेहतर इलाज मुहैया करावण राई हुक्म दीना। वे सड़क सुरक्षा मित्र

0: प्रोत्साहन राशि सागर जरूरी साजो सामान देवण बाबति कहो। डॉक्टर बैरवा जनता सारू आसान और आरामदायक सफर तय करण सारू बसारी फिटनेस जांच करावण और बस चलावण वाला रा स्वास्थ्य री जांच करावण में थई जोर दीनो। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले नौजवानों नशो नी करण बाबत कहो है। वे आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन में बोल रहा है। अठावले नौजवानों वारी ताकत देश बनावण में लगावण सारू कहो। केंद्रीय राज्य मंत्री कहो कि नशाओं समाज रा हर तबका ने नुकसान फै है। वे सगड़ा लोगों ने आरे सारे रा नशो करण वाला ने नशो छोड़वा सारू प्रेरित करण बाबत कहो। मंत्री जाति रा आधार उन जनगणना ने देश सारू चोखी बताई।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। तब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है भी जानकारी मिलेगी, और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का एससी एसटी को ओबीसी को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: श्री अठावले कहो कि नशा मुक्ति केंद्र खोलण वाला ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय री ओर उमाली मदद दी जावेला। वह एक गैर सरकारी संस्थान का नीम राखी जिया नागरिक और दिव्यांग जन सम्मान समारोह में आई शिरकत कीनी। इस मौके वह कहो कि मंत्रालय दिव्यांग जन ने जरूरी साजो सामान मुहैया करावनो तय कीनो है। आज बाल श्रम निषेध दिवस मनाई चियो। इस मौके करौली में बैक टू स्कूल अभियान शुरू करी चियो। इन तेत 12 जुलाई ताई सामुदायिक जागरूकताओं जुड़िया कार्यक्रम रख्या जावेला। इस आगे स्कूल छोड़ चुक्या बच्चा ने उजू भणाई लिखाई उन जोड़बा और बालपना माए ब्याह न रोकण माथे जोर दियो चियो। जिला रा 30 गांवां रा सर्वे माए करीब 650 टाबरियां रे स्कूल छोड़बा और 600 टाबरियां रो बालपना माए ब्याह वेवन री शंकारी ठापड़ी। पाली जिला रा सुमेरपुर में एक बच्ची ने मजूरियों आजाद कराई ची। रब मौसम, राज्य रा उगनी हल्का माए लारला 24 घंटा माए बादलां री गाज और बीजनिया री चमक सागे जोरदार बायरो बाजो और बिरखा फी। श्री गंगानगर माए आज ओला पड़िया। दूजी कानी आतुणी हल्का माए कठे कठे लू बाजी और रात्रि बगती तेज गर्मी रही। प्रदेश माए घनखर ठोड़ा पारो 40-43 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो चाचियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में 16 जून ताई कठे कठे बादलों री गाज सागर तेज बारिश रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन आफ्टर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, यानी अगले 1-2 दिन पश्चिमी राजस्थान में एक प्रयोग की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: एशियाई खेला में सोनारो तमगो जीतने वाला दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा देवलोक फेंक्या है। 49 साल रा राणा भारत रा निशानेबाजा ने पिस्तौल चलावण री सिखावण देवण माय लाग्योड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता निशानेबाज जसपाल राणा रा देवलोक फेवण पर गहरो शोक जतायो है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा ने चैंपियन एथलीट बताता था कहो कि हमारा योगदान ने हमेशा याद रखियो जावेला। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार लारला 12 साल माए महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू जयपुर माए राज्य स्तरीय कार्यशाला रखी जी। राज्य सरकार सड़का माथे हिफाजत ने जन आंदोलन मनावण सारू भेली जिम्मेदारी सागे काम करण री

0: पीलकिनी और प्रदेश उगनी हल्का माए गरज चमक सागे बरसात आतुनी हल्का माए लू रो कोप ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला नमस्कार।
1: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: किसान बण भाइयों राम राम। आप सुन रहे हो सजीव फोन इन चौपाल कार्यक्रम और आपका साथी शशि भाई कैडिसो। आप सभी को आज की चौपाल में घणो घणो स्वागत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। किसान भाइयों और बहनों, सभी फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक का प्रयोग करें। इसे विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे चना, मसूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और आलू में लगने वाले बीज जनित एवं भूमि जनित उकटा, जड़ गलन, तना गलन, अंकुर गलन, कंद सड़न आदि रोगों के प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार, कंद उपचार, नर्सरी उपचार करें। ये पौधे में रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की क्रिया विधि को सक्रिय करता है। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अपघटन की दर बढ़ाता है। साथ ही किसान भाइयों, बीज और पौध उपचार का कार्य छायादार सुरक्षित स्थान पर करें। ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य कवकनाशी रसायनों का प्रयोग न करें।
0: किसान वण भाइयों, आप सभी का मंगल स्वास्थ्य की कामना का साथ लियो आज की चौपाल की शुरुआत करा और सबसे पहली बात करा अपना टाबरा की। तो किसान साथियों, हर साल 12 जून का दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनायो जाओ। ई दिन का तय मनावा को मकसद छ के 14 बरस तय को कोई भी टाबर हो, किसी भी मजबूरी हो, वो मजदूरी न कर बल्कि स्कूल जाव, पढ़ाई कर और अपनो बचपन खुशी से जी सक। माता पिता का तय भी समझनी छाव के शिक्षा ही बालक को सबसे बड़ो धन छ। आज को पढ़ो लिखो बालक हाल को सफल नागरिक बनागो। बालका ने शिक्षा से जोड़ा, वह अपनो भविष्य बनाओगा और देश की प्रगति में योगदान देगा। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर अपन सब मिलकर यो प्रण करा कि कोई भी बालक मजदूरी करवा के लेकर मजबूर न हो और हर बालक ने शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को अधिकार मिला। आगे और बात करा तो आजकल मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का बना जीवन अधूरो लागे छे। छोटा बालका से लेर बड़ा बुजुर्ग आता है, हर कोई कई घंटा ताई मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे छे। ई आदत को सीधो असर अपनी नींद पर पड़ रहे छे। रात में देर ताई मोबाइल चलावसु आंखिया में थकावट, तनाव, चिड़चिड़ोपन और नींद की समस्या बढ़ रही छे। विशेषज्ञ बताओ छे कि स्वस्थ शरीर और शांत मन कर लेकर पूरी नींद लेबो घणो जरूरी छे। योग, प्राणायाम और ध्यान जैसे सरल उपाय अपना कर नींद की गुणवत्ता सुधारी जा सके छे। योग केवल शरीर नहीं मजबूत न बनाओ बल्कि मन का ताई भी शांत करे छे। नियमित योग और प्राणायाम करबा से छोकी नींद लेबा में घणी मदद मिले छे। आगे और बात करा तो किसान बण भाइयों, आप तो जानो ही चुके यो समय खरीफ की फसलों की तैयारी कर लेकर कतनो कीमती छे। ई लेके ई भगत खेत की गहरी जुताई करा, मिट्टी की जांच करवा, फसल और बीज को चुनाव, वैज्ञानिक की सलाह सु करा और भरपूर फसल उत्पादन लिया। काश्तकार बण भाइयों, आप सभी भरपूर मन्नत करो छो और आपकी मन्नत को आपका ताई पूरा पूरा लाभ मिले। ई लेकर चौपाल कार्यक्रम में अपन कृषि विशेषज्ञ सो खेती बाड़ी की बारीकियां का ताई जान बार समझबा को प्रयास करा छा। तो आज की चौपाल में अपन खरीफ फसलों की उन्नत किस्मा और वहां की विशेषता का बारे में नरी सारी बात करेंगा और ई विषय पर जानकारी देवा के लेकर आज माने चौपाल में आमंत्रित करो छो डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी का ताई। तो आप सभी किसान साथियों सो डॉक्टर साहब को चौपाल में स्वागत करा छा। डॉक्टर साहब राम राम।
2: नमस्कार। राम राम राम जी।
0: काश्तकार बण भाइयों, डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा में सहायक आचार्य का रूप में अपनी सेवा दे रहे छे। तो आप भी विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ पूछाओ चो

0: या कोई जानकारी लेबो चाहो छो तो सीधा चौपाल में फोन करो। चौपाल में फोन करवा के लेकर अपना वही जाने पछाने नंबर 2941142 एसटीडी कोड 0744। तो डॉक्टर साहब, किसान बन भाया का फोन आव, उस पहले मारा मन में एक सवाल आ रहे तो मैं पूछ ही लियो। डॉक्टर साहब, खरीफ की जो फसल की बुआई को बगत आ गयो है ना, जैसे बरसात पड़ेगी, किसान बन भाई तैयारी करी रहा है तो वह बीज की वहां व्यवस्था कर लेगी, खाद की भी व्यवस्था कर लेगी, फिर वो बुआई करेगा। तो सबसे पहले तो यह बात आपसे समझबो चाहूंगा कि भाई उन्नत जो किस्मा छे वहां को चुनाव किसान बन भाई करे तो इनको काय महत्व रहे फसल उत्पादन में।
1: देखो शशि भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो भी अपन खेत में क्रियाई कर रहे हैं फील्ड प्रिपरेशन से अपन हार्वेस्टिंग तक का, तो सारी अपना जो लागत लगा रहे हैं फील्ड के अंदर, खेत के अंदर, अगर अपना बीज ही अच्छा नहीं होगा तो अपनी जो सारी जो मेहनत है, जो अपना पैसा है, वो बर्बाद है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो उच्च गुणवत्ता का बीज का जो सिलेक्शन चुनाव है वो बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए अपन को जो अच्छी वेराइटीज है, तो अगर किसानों को इस चीज का नॉलेज नहीं हो तो पास के जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि कॉलेजेस वगैरह है और दूसरे जो इंस्टीट्यूट है, वहां जाके उसकी जानकारी आराम से ले सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और प्रमाणित बीज ही मार्केट से वो परचेज करे, खरीदे, उसी को ही प्रॉपरली से ट्रीट करके उसको उगाए, ताकि अपना जो बीज अपन डाल रहे हैं खेत में वो पूरा उगे। इसका अपन को संतुष्टि कैसे मिलेगी, जब उसके ऊपर सर्टिफाइड सीड या फिर फाउंडर सीड अपन लेते हैं, टीएल सीड अपन लेते हैं, तो वो पूरा उसके ऊपर टैग मिलता है कि कितना परसेंट उसमें जनरेशन होगा, कितने इसमें क्वालिटी होगी, फिजिकल प्योरिटी उसमें कितनी है, 32-37 जिसको अपन बोलते हैं, तो उसको देखते हुए ही अपन को बीज उसमें लेना चाहिए, ताकि जितना बीज अपन खेत में डाल रहे हैं वो पूरा उसमें उगे, उसकी जो उत्पादकता अच्छी हो और बेहतर अपन को उसमें गुणवत्ता और उत्पादन उसमें मिले।
0: बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, यह भी समझ वो चाहूंगा कि कैसे बीज कताएं उच्च गुणवत्ता को बीज क्यों जा सके, उनमें काय काय विशेषता होनी चाहो जिस वो बीज गुणवत्ता वालों बीज कहलाओ।
1: देखो, गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता के बहुत सारे पैमाने होते हैं। जैसे हम बात करें तो उसकी भौतिक शुद्धता, जिस फसल का अपन बीज काम में ले रहे हैं, जैसे हम बात करें धान का या फिर मक्का का या फिर सोयाबीन का, तो उसमें सोयाबीन का ही बीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरी क्रॉप का बीज उसमें मिक्स हो, और जो वैरायटी अपन ले रहे हैं उसी वैरायटी का उसमें बीज उसमें होना चाहिए। तो ये तो होती बहुत ही शुद्धता उसकी, मतलब 100% तो नहीं बोलते, 98% तक उसमें वही बीज होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: बहुत ही शुद्धता के बाद में उसमें आती है जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी मतलब आनुवंशिक शुद्धता उसकी कितनी है, वो भी उसको इंश्योर करेगा कि जो वैरायटी बनी है उसके जो क्या क्या उसमें गुण है, उसके यील्ड को लेकर, उसके परफॉर्मेंस को लेकर, उसका ग्रोथ पैटर्न क्या रहेगा, कब पकेगी वो, जल्दी पकेगी, लेट पकेगी, उसकी जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स है वो उसमें होते हैं, तो उसकी जेनेटिक प्योरिटी उसमें होनी चाहिए।
0: बहुत बढ़िया।
1: तीसरा पैरामीटर अपन लेते हैं उसके अंदर अंकुरण क्षमता, जिसका जो मानक उसमें दे रखा है सोयाबीन, बात करें तो 70% तक उसमें अंकुरण क्षमता उसमें होनी चाहिए। जो भी सीड अपन उगा रहे हैं उसका 70%, मतलब 100 बीज अगर अपन डाल रहे हैं खेत में तो 70 बीज तो उसमें उगने ही चाहिए, और उससे कम अगर बीज उग रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वालिटी का सीड नहीं है।
0: तो एक कहता है तो किसान बन भाई खुद भी जांच सके,
1: खुद भी उसमें बीज अपन, जैसे अभी टाइम है किसानों के पास में, तो वो आराम से अपने घर पर भी जर्मिनेशन टेस्ट उसका अंकुरण क्षमता उसकी चेक कर सकते हैं। मार्केट जो बीज ला रखे हैं या फिर अपने खुद के पास कोई बीज रखा हुआ उसको लगाना चाह रहे हैं एक साल पुराना, तो उसकी अंकुरण क्षमता क्या है उसको फार्मर्स भी अपने घर पर सिंपल टेस्ट है। जैसे अपने एक बोरी का टाट ले लो, उसको मॉइस्चर कर दो, 100 बीज डाल दो और उसमें उसको देखते रहो 10-12 दिन के बाद कितने बीज उसमें उग रहे हैं। अगर 70% से ज्यादा है इसका मतलब वो बीज क्वालिटी का है, उसको उगाने में कोई दिक्कत नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अगर कम जाता है तो फिर वो क्वालिटी का नहीं है, उसमें फिर अपन को उसकी थोड़ी सी डेट बढ़ाकर उसमें देनी पड़ेगी, ताकि अपन प्लांट पॉपुलेशन फील्ड में मेंटेन कर सके, ताकि अपन को एक हेक्टर से अपन का जो उसका प्रोडक्शन पोटेंशियल है 10 क्विंटल, 8 क्विंटल, 12 क्विंटल अपन को पूरा मिल सके।
0: जी,
1: ये हो गया। तीसरा चौथा पैरामीटर आता है उसका मॉइस्चर,
0: नमी,
1: बीज में नमी कितनी है। अगर बीज में उपयुक्त नमी है 8-10% तो अच्छी है वो, अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो बीज अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें फिर फंगस वगैरह के या फिर कीट पतंगों के उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं। ज्यादा ड्राई है तो फिर वो जर्मिनेशन उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो अंकुरण क्षमता भी उसका वो होता है। लास्ट पैरामीटर पर बात करें तो उसका शेप, साइज और कलर, वो भी उसका यूनिफॉर्म एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोयाबीन के बीज के अंदर ब्राउन सीड भी

0: येलो सीड भी है, तीन चार कलर के मिक्स हो रखे हो, तो वो क्वालिटी का सीड नहीं बोलते उसमें। बीज दिखे तो अपन को बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे, वो आकर्षक लगे, एक जैसा कलर, एक जैसा शेप साइज होना चाहिए, छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये सारे उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो क्वालिटी सीड अपन जो देख रहे हैं उसमें पूरा अपन को ये दिखेगा उसके अंदर।
1: तो प्रमाणित बीज आउचे वो सब जो आपने बताया चाहिए का मानक वो सब मल जाओ
0: उसमें रहते हैं। उस प्रमाणित बीज के ऊपर टैग लगा होता है, टैग के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारा ये लैब में टेस्ट होता है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, वो उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ इस सीड में ये पैरामीटर्स इसके अंदर आ रहे हैं। और वो पैरामीटर सारे जो फार्मर्स बीज खरीदता है वो तो टैग को देखकर उसमें उसको अपन संतुष्टि ले सकता है कि हाँ ये पैरामीटर इसमें फिलफिल हो रहे हैं, तो ये मतलब टेस्टेड है बीज पूरा।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने खींचे डॉक्टर साहब। एक और बात आपसे समझवो चाहूंगा कि किसान बन भाई फसल लगाओ चे तो घर को बीज भी वहाँ के पास रह चे, तो हर बार कोई नयो बीज लेवा की जरूरत पड़े चे का?
0: देखो अगर बात करें अपन हाइब्रिड्स की, अगर हाइब्रिड ले रखा लिया है लास्ट ईयर फार्मर ने किसी भी किसान भाई ने, तो वो उसको दोबारा नहीं लगा सकता।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हाइब्रिड के अंदर फिर वो यील्ड पोटेंशियल उसका नहीं आता है और वो क्वालिटी उसमें नहीं रहती है, तो उसको हर साल उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम बाजरे की बात करें, बाजरे में आजकल हाइब्रिड चल रहे पूरे, संकर भी, मक्का में भी संकर भी है, दूसरी कंपोजिट वेरायटी भी है, तो जो हाइब्रिड की बात करें तो हर बार उसको चेंज करना पड़ेगा किसान भाई को। बाकी जैसे वेरायटीज है किसमें है, कंपोजिट वेरायटी है या फिर सिंपल वेरायटी है, तो उसको किसान भाई आराम से 3 से 4 साल तक आराम से काम में ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: तो
0: बट वही है कि जैसे फार्मर अगर सीड को जो भी अपने अगले साल बुआई के लिए काम मिलेगा तो उसको ढंग से साफ सफाई करके, जो अच्छे बीज है उसको सेलेक्ट करके, उसको ढंग से स्टोर करके रखे, तो वो आगे आराम से उसको काम में ले सकता है।
1: बिल्कुल बढ़िया, ग्रेडिंग कर ले, उनकी सफाई कर ले,
0: ग्रेडिंग कर ले, ढंग से उसको सुखा लो, ढंग से उसको स्टोर कर लो, तो अगले साल वो आराम से काम में ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर।
1: बहुत बढ़िया बात कीजा आपने डॉक्टर साहब। और आपसे यह जानबो चाहूंगा कि आपने यहाँ हाड़ोती में जो यहाँ की मिट्टी चे, यहाँ की जलवायु चे, एक अनुसार जो फसलां यहाँ पर ज्यादातर बोई जाओ चे, तो वहां सो कसी कसी फसलां चे जे किसान बन भाई इस समय पर लेगा?
0: देखो शशि भाई, अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ के मौसम में बहुत सारी फसलें आती है, बट अगर अपन बात करें हाड़ोती रीजन की, क्योंकि अपने पास यहाँ पर काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी के अकॉर्डिंग जहाँ यहाँ पर फार्मर लेता है तो उसमें सोयाबीन क्रॉप ले सकता है आराम से।
1: एक किसान साथी जी यहाँ राम राम करना जा। हेलो हेलो,
2: राम राम भाई साहब।
1: राम राम साहब, आपको शुभ नाम?
2: मारो नाम महावीर राठौर भाई साहब।
1: महावीर जी किसे गांव से बोल रहे?
2: गाँव मंगाल से भाई साहब।
1: मंगाल?
2: हाँ, बूंदी का पड़े मंगाल गाँव से।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कहीं प्रश्न पूछ बुझाओगे आप?
2: ये पूछ जो क्या उड़द पाऊंगा सात बीघा, तो उड़द हाइब्रिड भी आओ जगह?
1: हाँ डॉक्टर साहब,
0: देखिए उड़द में कोई हाइब्रिड नहीं है अभी, जो उड़द की जो वेराइटीज है हमारे यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज से निकली हुई है, कोटा उड़द 3, कोटा उड़द 4, कोटा उड़द 5, कोटा उड़द 6, ये काफी अच्छी वैरायटी है और हाड़ोती रीजन में काफी उसका उत्पादकता और बेहतर गुणवत्ता है उसकी। तो ये वैरायटी अगर आप किसमें काम में लो तो आराम से आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। बाकी आप हाइब्रिड की बात करें तो उड़द में भी कोई हाइब्रिड नहीं आया है। हाँ, बढ़िया क्वालिटी का ही, जो चारों वैरायटी ने बताई है वो कृषि अनुसंधान केंद्र से ही निकली हुई है और काफी अच्छी फार्मर्स में इसका प्रचलन है।
1: एक बार फिर दोहरा दो किसी किसी।
0: कोटा उड़द तीन, कोटा उड़द 4, कोटा उड़द 5 और कोटा उड़द 6, काफी अच्छी वेरायटी है। कोटा उड़द 3-4 का तो बीज आपको मिल जाएगा, 5-6 भी नई वेरायटी निकली है लास्ट ईयर ही, तो अगले साल तक इनका बीज आपको मिल जाएगा।
1: कहाँ पर मिलेगा बीज?
0: बीज की बात करें तो आपको कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज में मिल जाएगा, कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में मिल जाएगा, इसका बीज आपको आराम से मिल जाएगा।
1: बूंदी में मिल जाओगे?
0: बूंदी में जो कृषि विज्ञान केंद्र आपका बूंदी है वहाँ आप ट्राई कर सकते हो।
2: कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ से?
0: बूंदी में है।
2: बूंदी में कैसी जगह से?
0: बूंदी के अंदर ही है वो।
1: हाँ,
2: बूंदी के अंदर ही, जो
0: हिंडोली के आसपास है वो।
1: हिंडोली का रास्ता पर? बिल्कुल, वहाँ कोई से पूछेगा तो आपका टाइम बता देगा। है ना महावीर जी, आपसे बात करी बहुत बढ़िया।

0: जी राम राम साहब।
1: राम
0: हाँ डॉक्टर साहब, अपने बात हो रही थी कि भाई हाड़ होती में सोयाबीन की फसल भी करे छे, धान भी लगाओ छे, मक्का भी करे छे, मूंग उड़द भी करे छे, मूंगफली तलिया भी बाओ छे, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर साहब ये जो फसल छे तो यहाँ की जो वेराइटियाँ छे, यहाँ की जो किस्म छे, वहाँ के बारे में भी आपसे जान बुढ़ समझ बुझाऊंगा।
2: देखो शशि भाई, अगर अपन बात करें धान की, तो देखो इस बार धान का रकबा किसान लोग सोच के तो चल रहे हैं कि बढ़ाने का है, क्योंकि लास्ट ईयर सोयाबीन में लोगों को बढ़िया उत्पादन नहीं मिला है।
0: जी एक किसान साथी जी, सो राम राम करा जा। हेलो हेलो,
3: अरे राम राम।
0: राम राम साहब,
3: तो करे तो दान
0: दान तो पहले आपको शुभ नाम तो बताओ डॉक्टर साहब, जान बुझाओ जे। द्वारकीलाल जी, किसे गांव से बोल रहे जो?
3: खलुंदा से बोल रहे।
0: खलुंदा से?
3: हाजी हाजी।
0: हाँ द्वारकीलाल जी, अब पूछो आपको प्रश्न।
3: माको प्रश्न से बढ़िया पैदावारी
2: धान की?
3: हाजी।
2: तो देखिए द्वारकीलाल जी, अगर धान की बात करें तो धान की जो अच्छी वैरायटी अपने इसमें चल रही है, अगर आपको धान उत्पादक किस अच्छा उत्पादन के साथ लेना है, तो सबसे अच्छी वैरायटी धान में 1847 है, पूसा बासमती 1847।
0: 1847
2: पूसा बासमती।
0: पूसा बासमती
2: 1847 से उत्पादन बम्पर उत्पादन देती है वैरायटी।
0: कहाँ पर मिलेगी
2: ये वैरायटी? आपको कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में आराम से मिल जाएगी। और आप बात करो, अगर आप निर्यात के हिसाब से मार्केटिंग के हिसाब से बात लेना चाह रहे हो, तो पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1121 काफी अच्छी वैरायटी है। हाँ जी
3: हेलो।
0: हाँ जी, कितना दिन में पके छे?
2: देखो पकने की बात करें तो जो अपन 1718, 1885 और 1121 की बात करें, तो ये 140 से 145 दिन में पक तैयार हो जाती है। अगर आपको जल्दी पकने वाली वैरायटी चाहिए तो पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है अपनी,
0: है ना?
2: तो आप अगर नेक्स्ट प्लान आप गेहूं का कर रहे हो तो ये वैरायटीज में आराम से एडजस्ट हो जाएगी। पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1847 115 से 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है।
0: जी राम राम साहब।
2: हाँ जी
3: 1509।
2: हाँ आराम से 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है।
3: हाँ।
2: तो ये भी अच्छी वैरायटी है। अगर आप इसका और इम्प्रूव वर्जन चाहते हो, उससे अच्छी वैरायटी है, तो पूसा बासमती 1847 इसी का बड़ा भाई मान लो उसको,
0: है ना?
3: राम राम
0: साहब। हाँ डॉक्टर साहब, धान की बात हो रही थे, अपन पहले भी धान की बात कर रहे थे, तो धान में जो किस्म आपने बताई थी 1847 पूसा बासमती
2: 1847
0: इनकी कहीं विशेषता रच?
2: देखो इसकी बात करें विशेषताओं की, पूसा बासमती 1847 जो पूसा बासमती 1509 थी अपनी, उसी का ही थोड़ा सुधरा हुआ रूप है ये। जैसे पूसा बासमती 1509 की बात करें तो उसका यील्ड पोटेंशियल भी अच्छा था, आराम से 45 से 50 क्विंटल यील्ड वो देती थी। बट उसमें
0: एक हेक्टर में
2: 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टर उसकी यील्ड थी। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी जल्दी पकने वाली थी, 115 से 120 दिन में वो पककर तैयार हो जाती थी, तो आराम से किसान भाई उसको गेहूं में फिट कर लेते थे। बट उसमें मेन दिक्कत क्या आती थी कि वो जो उसमें जीवाणु झुलसा रोग होता है उसके प्रति वो सहनशील थी, वो ब्लास्ट के प्रति सहनशील थी। तो जो इसका जो सुधरा रूप आया पूसा बासमती 1847 वो वैरायटी इन दोनों डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधी है।
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक किसान साथी चाहे सो राम राम करा जा। राम राम साहब।
4: राम राम साहब।
0: हाँ आपको शुभ नाम?
4: जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी किस गाँव से बोल रहे छो? बाजड़। हाँ जी जितेंद्र जी, का एक प्रश्न पूछ बुझाओगा
4: डॉक्टर साहब जी? कुछ साहब
0: धान की उराई कर सका जगह?
2: देखो जितेंद्र जी, अभी धान की उराई के लिए फील्ड तैयार नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर नर्सरी की बात कर रहे हो, नर्सरी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद में आप उसको डायरेक्ट
0: खेत में
2: ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो पर्लिंग के द्वारा।
4: जी सीधी उराई करनी है?
2: सीधी उराई करनी है तो आप अभी बारिश एक बार और आ जाए तो आप 15 से 20 दिन बाद में आराम से सीधी बुआई कर सकते हो,
0: है ना? सही समय रह चुके
2: फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बिल्कुल सीधी बुआई के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है।

0: या फिर लास्ट जून तक आप डाल सकते हो। नहीं अभी शुरू की शुरुआती वाली बारिश है ना, अब आगे मान लो अगर बारिश नहीं आती है तो आपके पास अगर सोर्स ऑफ इरीगेशन है तो भी आप 10 दिन कम से कम रुको अभी इसके लिए,
1: है ना। बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने फोन करने के लिए का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हाँ डॉक्टर साहब।
0: हाँ तो अपन बात कर रहे थे
1: धान की,
0: पूसा बासमती 1847।
1: हाँ
0: तो 1847 जो 1509 है उसका ही सुधरा हुआ रूप है वो, दोनों जो जीवाणु झुलसा रोग और ब्लास्ट जो चावल में या धान में बहुत ही ज्यादा बीमारी आती है उसके प्रति वो रेजिस्टेंट है, प्लस जल्दी पकती है, कम पानी में भी इसको अपन आराम से ले सकते हैं,
1: है ना।
0: तो ये इनकी खासियत
1: उत्पादन कत्तों हो जाओ चीज़।
0: उत्पादन की बात करें तो पूसा बासमती 1847 का उत्पादन 55 से 57 क्विंटल तक पर हेक्टेयर आराम से मिल जाता है
1: ना।
0: इसका यील्ड पोटेंशियल है, अगर फार्मर्स अच्छी प्रैक्टिसेस करता है तो 55 से 57 क्विंटल तक उसका आराम से उत्पादन ले सकता है।
1: बहुत बढ़िया। धान की और कसी कसी किस्मा की विशेषता कहीं चे?
0: देखो धान की अगर अपन बात करें और दूसरी किस्मों का तो पूसा बासमती 1509-1818 मैंने बताई दिया आपको, इसके अलावा पूसा बासमती 1121
1: इनकी कहीं विशेषता जी?
0: 1121 की अपन बात करें तो ये बिल्कुल बासमती अच्छा सुगंध है इसका, इसका दाना भी बिल्कुल जैसे अपन तानसेन जो लोकल वेराइटी चलती है डबल वाली, डबल चाबी जैसे लंबा दाना इसका बनता है 20 से 22 mm जितना लंबा पकने पे ये हो जाता है और इसकी सुगंध भी काफी अच्छी आती है। साथ में बात करें इस वैरायटी का तो ये वैरायटी निर्यात के लिए जो अपन बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ये डिमांडेड वैरायटी है।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो इसका अपन को काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है।
1: मिल जाता है। बहुत बढ़िया जी डॉक्टर साहब, और भी बातें करेंगे एक छोटा सा विराम के बाद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान वर्ण भाइयों, आप सुन रहे हो सजीव फोन इन चौपाल कार्यक्रम और आज की चौपाल में अपना मेहमान छे डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। और आज बातचीत हो रही है खरीफ फसला की उन्नत किस्म और वहाँ की विशेषता के बारे में। तो किसान वर्ण भाइयों, विशेष जुड़े हुए आपका मन में जो भी कोई सवाल हो आप सीधा चौपाल में फोन करके डॉक्टर साहब से पूछ सको। चौपाल में फोन करवा कर लेके वही अपना जाना पहचाने नंबर 2941142 STD कोड 0744। तो ये नंबर मिलाओ और अपना विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी से आप बात करो, वहाँ से प्रश्न पूछो। डॉक्टर साहब, हमारा मन में प्रश्न आ गया कि आपने की कि भाई धान की जो उन्नत किस्म है वह बढ़िया चे और वहाँ को बीज अपना कृषि अनुसंधान केंद्र में और कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर मिल रहे। तो डॉक्टर साहब, जो किस्म आपने बताई चे तो वहाँ की बुआई जैसे गरड़ करके ही करी जाओ या फिर वहाँ की सीधी बुआई भी कर सके?
3: देखो, इनकी दोनों तरह से बुआई कर सकते हैं अपन। अगर किसान के पास पर्याप्त पानी है और फील्ड में अगर आप इस टाइम नर्सरी डाल के गरड़ा करके आप कर सकते हो तो आपका क्या जो बीज जर्मिनेट होगा, अंकुरण होगा, वो टाइम अपने पास बच जाएगा। एक तो सीधी पौध अपन फील्ड में लगाए गरड़ा करके, एक अपन डायरेक्ट सीड एड उसमें डाले तो एक तो पौध अपन पहले से कहीं तैयार कर रहे हैं और जो फील्ड दूसरा अपना वह है उसको तैयार करके उसमें सीधा लगा रहे हैं। तो अपन पौधे को एक महीना पहले या 25 से 30 दिन पहले अपन उसमें एडवांस स्टेज में दे रहे हैं। तो उसमें अपन को जो मैच्योरिटी है, परफॉर्मेंस उसमें अच्छी मिलेगी अपन को
2: जी,
3: बजाय डायरेक्ट सीडेड के अंदर। बट ये है कि अगर किसान नर्सरी तैयार नहीं कर रखा हो तो उसको फिर तो डायरेक्ट सीडेड में जाना ही पड़ेगा
2: जी। एक तो राम राम करना चाहिए। हेलो,
4: हाँ जी, राम राम।
2: राम राम साहब, आपको शुभ नाम
4: जी। कुलदीप पाटीदार बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी कुलदीप जी, कैसे गांव से बोल रहे हो?
4: सर, मैं वैसे तो झालावाड़ जिले के ओसाव गांव से बोल रहा हूँ, पर अभी मैं इधर कोटा ही हूँ और आपकी सार्थक चर्चा सुन रहा था तो मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने कहा एक बार डॉक्टर साहब से बात करें।
2: जी बिल्कुल, स्वागत है आपको। का प्रश्न है?
4: सर, प्रश्न ये है कि जैसे अभी जो सोयाबीन का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस बार सोयाबीन बिल्कुल गए, जो गया साल है अपना बिल्कुल उत्पादन नहीं बैठा। और जैसे मैं खुद किसान परिवार से

0: तो सर हमने एक चीज देखी कि सोयाबीन में लागत भी बहुत ज्यादा हो गई है, लागत बहुत ज्यादा हो रही है और उतना उत्पादन अपन ले नहीं पाते हैं उतना अच्छा से, तो इसके इसके लिए अपन से उड़द है, मूंग है, इनमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करें उतना ज्यादा अच्छा अपन अच्छी खेती कर पाए, अच्छा मुनाफा कमा पाए।
1: बिल्कुल, विकल्प का तौर पर कहीं फसल की वो बुआई कर सके जो सोयाबीन की जगह पर।
2: देखो कुलदीप जी, जैसे अपन देख रहे हैं, मैं भी झालावाड़ कोटा हाड़ोती रीजन में 8 साल से जॉब कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर पे।

0: तो एक इसमें एक अपने पास अल्टरनेट है कि अगर सोयाबीन नहीं अपन नहीं ले ले पा रहे हैं तो आप धान पे जा सकते हैं। अगर धान भी नहीं लेना चाहते हो तो मूंग उड़द, मैं उड़द उड़द बेस्ट है, उसका मार्केट प्राइस भी अपन को अच्छा मिल जाता है आराम से। अगर बीज की बात, बीज में अगर आप ले रहे हो फाउंडेशन सर्टिफाइड बीज ले रहे हो तो आराम से 15 से 16 हजार रुपये क्विंटल आराम को आपको बीज में मिल जाता है। अब वैसे भी अगर बात करें तो अपन को 6-7-8 हजार रुपये क्विंटल आराम से उड़द का बीज अपन को मंडी में अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो आप उड़द पे आराम से शिफ्ट हो सकते हो, आराम से ले सकते हो। छोटी क्रॉप है, 60 से 65 दिन की 70 दिन की क्रॉप है, उसके बाद में आप गेहूं की तैयारी आराम से कर सकते हो।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। हाँ डॉक्टर साहब, सोयाबीन की बात चल रही है तो सोयाबीन की जो दूसरी किस्म है वहाँ का बारे में भी आपसे जान पूछूंगा।
0: देखो शशि भाई, सोयाबीन की बात करें तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि इस बार बीज सोयाबीन का बहुत ही कम क्वांटिटी में है, बट वैरायटी की बात करें जो अच्छी अपने हाड़ौती रीजन में पॉपुलर वैरायटी है, उसमें अगर बात करें अपन जबलपुर की जो जेएस सीरीज की वैरायटीज है, जेएस 20-34 है, 95-60 है, जेएस 21-72, काफी अच्छी ये वैरायटीज है जो फार्मर्स के बीच में बहुत प्रचलित है।
1: कई विशेषता चाहिए की
0: विशेषता की बात करें तो जो सारी वेरायटी है जेएस 95-60, 20-34 और 21-72, ये एक तो अर्ली मैचिंग वेरायटी है, 90 से 95 दिन में आराम से पककर वो
1: पक जाओ
0: तैयार हो जाती है। उसके अलावा ये कुछ वेरायटी इनका यील्ड पोटेंशियल भी काफी अच्छा है, आराम से 25 से 30 क्विंटल अपन को पर हेक्टर तक इसका यील्ड पोटेंशियल है, बट फार्मर्स के फील्ड पे वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाती क्योंकि वो फिर क्राइटेरिया रहता है कि बारिश कम तिब्बती हो जाए, ज्यादा हो जाए, वो वाला इश्यू आता है। दूसरी बात करें ये में से कुछ वैरायटी जो येलो मोजेक डिजीज होती है उसके प्रति ये रेजिस्टेंट होती है, कुछ वैरायटी कम पानी के लिए भी अपन लगा सकते हैं, जैसे जेएसपी 21-72 है, उसका यील्ड पोटेंशियल भी अच्छा है और कम पानी के अंदर उसको अपन ग्रो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे मक्का भी यहाँ बाउच मूंग उड़द भी करे चे तो यहाँ की कुछ किस्म आप सुझाव का तौर पर किसान बनवाया कर लेकर।
0: अगर मक्का मक्का की बात करें तो अपने जो एमपीओटी महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय वहाँ से 2-3 वैरायटी निकली हुई है, उसमें प्रताप मक्का 1 है, प्रताप शंकर मक्का 3, ये काफी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा क्वालिटी प्रोटीन की बात करें तो QPHM1, QPHM3, 5, ये अच्छी वैरायटी है।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, अब समय बिल्कुल खत्म हो रहे हो तो आप अंत में किसान बनवाया कहता है सुझाव का तौर पर काई खबर चाहोगा।
0: देखो सुझाव के तौर पर किसान भाइयों को मेरा यही सुझाव या फिर निवेदन कुछ भी बोल सकते हैं अपन, तो ये है कि जब अपन अगर सोयाबीन की अपन बुआई कर रहे हैं तो अपन को जब बारिश अगर 100 mm तक बारिश हो जाए उसके बाद में ही अपन उसमें फील्ड में सोइंग करें। 100 mm या इससे कम बारिश होती है तो आप उसमें रिस्क ना ले वरना आपका बीज खराब जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: तो कम से कम 100 mm की बारिश उसमें होनी चाहिए, फार्मर्स को प्रमाणित बीज ही खरीद कर उसको उगाना चाहिए, साथ में उसको बीज उपचार अवश्य करे, समन्वित उर्वरक और खरपतवार नियंत्रण अवश्य करे और जल भराव की स्थिति से उसमें बचाए।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया चेट डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा, आप चौपाल कार्यक्रम में पधारे और किसान बनवाया के लेकर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, लेकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम जी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। किसान भाइयों और बहनों, सभी फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक का प्रयोग करें। इसे विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे चना, मसूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और आलू में लगने वाले बीज जनित एवं भूमि जनित जैसे उकटा, जड़ गलन, तना गलन, अंकुर गलन, कंद सड़न आदि रोगों के प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार, कंद उपचार, नर्सरी उपचार करें। ये पौधे में रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की क्रियाविधि को सक्रिय करता है। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अपघटन की दर बढ़ाता है। साथ ही किसान भाइयों, बीज और पौध उपचार का कार्य छायादार सुरक्षित स्थान पर करें। ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य कवकनाशी रसायनों का प्रयोग न करें।
1: किसान बन भाई, अब आपका साथी शशि भाई कताई विद्योन्मति चाला फिर मलंगा, नई बात नई जानकारी के साथ। राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत और सुनिए पहला लोकगीत सुप्रिया की आवाज़ में।

0: अगले लोकगीत की ओर आपको लिए चलेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और YouTube लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।
0: श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं लोक संगीत और लीजिए सुनिए अगला लोकगीत पंडित चिरंजी लाल तंवर की आवाज में।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत सुनिए स्वाति शर्मा और गौरव जैन की आवाज में।

श्रोताओं, इसी के साथ लोक संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 102.3 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर, 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से।

लीजिए श्रोताओं, सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल आवाजों में फिल्म दिल तो पागल है से। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत उत्तम सिंह का।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत में अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। समीर के लिखे इस गीत को आवाज दी अनुराधा पोड़वाल ने और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोता, अभी आपने सुना फिल्म दिल है कि मानता नहीं से ये गीत। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत में अगला गीत फिल्म कयामत से कयामत तक से। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत आनंद मिलिंद का।

चित्रपट संगीत में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौड़ की आवाज में फिल्म बाजीगर से। गीत के बोल रानी मलिक के और संगीत अनु मलिक का।

0: श्रोताओं, चित्रपट संगीत में अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी नचा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज़ ऑन AIR। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। और लीजिए अब सुनिए अगला गीत, फिल्म हम आपके हैं कौन से, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें, गीत के बोल देव गौली के और संगीत राम लक्ष्मण का।

श्रोताओं, भी आपने सुना फिल्म हम आपके हैं कौन से ये गीत, और लीजिए अब सुनिए फिल्म चित्रपट संगीत में अगला गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म मन से। गीत के बोल समीर के और संगीत संजीव दर्शन का।

डीजे श्रोता, आप सुनिए चित्रपट संगीत का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म इंतहा से। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गीत के बोल राहत इंदौरी के, संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का आज का अंक। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का

0: कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 100

0: 31 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समय पर तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला

0: और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर, 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम SMS के बहाने, चंबल चैनल के तराने।

की कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं SMS या WhatsApp मैसेज के जरिए मिली आपकी फरमाइशों को। तो अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें हमारे WhatsApp नंबर 9530012020 पर संदेश भेज सकते हैं।

और लीजिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की पहले संदेश के साथ, जो कि हमें मिला है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा का। साथ ही हमें फरमाइश मिली है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक की। इसी के साथ हमें संदेश भेजा है फाजिल का पंजाब भूषण खेड़ा से विशु, लाड़ी, विशाल, शालिनी, टिवांशी और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। इन्होंने सुनना चाहा है किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म मजबूर से ये गीत, तो सुनवाते हैं इन सभी की पसंद पर किशोर कुमार का गाया ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। साथ ही गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा।

बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित और तानिया नारंग। कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। और साथ ही हमें संदेश मिला है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी और अंकित कांगड़ा का। इन्होंने सुनना चाहा है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तीसरी मंजिल से गीत। तो सुनवाते हैं इन सभी की पसंद पर ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना। टोरोवाल गांव नवा शहर पंजाब से हमें मैसेज किया है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से हमें संदेश मिला है सतवीर सिंह बिजाड़निया का। देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजाड़निया। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से हमें मैसेज किया है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। साथ ही जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलावानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयुब शेरी। इसी के साथ हमें संदेश मिला है हितेंद्र दास का। इन्होंने हमें मैसेज किया है आसाम से। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मेरे सनम का गीत। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म मेरे सनम से मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल की तराने आप सुन रहे हैं और इसी क्रम में अगला संदेश हमें मिला है जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन और वेकुंवर कनाडा से रोबिन सिंह जोसन। साथ ही ग्राम करवाला तहसील किशनगंज जिला 12 से हमें मैसेज किया है गोविंद सिंह गुर्जर, अभिषेक वंशिका निर्मला एवं समस्त मित्र। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक सचिन और नंदिनी शर्मा ने। चंडीगढ़ से हमें मैसेज किया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिकलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, इन सभी का संदेश हमें मिला है और इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म मुस्कान से कोई भी गीत। तो इन सभी की पसंद पर सुनवाते हैं उदित नारायण और अनुराधा पोड़वाल का गाया ये गीत फिल्म मुस्कान से।

श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और यूट्यूब लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए, 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।

श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने। आप जानते हैं कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए मिली आपकी फरमाइशों को और सुनवाते हैं आप ही की पसंद के गीत। इसी क्रम में हमें अगली फरमाइश मिली है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की। पत्रोड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी अंकुर, डॉक्टर सुनील जनागल। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत और बेबी जानविका। करणवीर हाउस भुचो केचनिया बटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत ने हमें मैसेज भेजा है।

साथी मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर और सत्ता एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन, बलजीत और दिशा मोहला। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, उमेश, राजेंद्र और मनहरन वर्मा। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सफर का गीत। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सफर से ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से बेरडी नानाजी लामसे, मीना लामसे, तेजस, जय और हर्षिता लामसे का। साथ ही वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने हमें संदेश भेजा है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म पड़ोसन का गाना, जो कि किशोर कुमार का गाया हुआ। तो इन सभी की पसंद पर सुनते हैं, आइए ये गाना।

श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने। और कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत, अर्पिता, रेखा और इशिका वर्मा का। रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान, इरफान और जिशान खान ने हमें संदेश भेजा है। साथ ही महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, इन्होंने हमें संदेश भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से।

आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष, बिमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदारा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इन सभी के संदेश हमें प्राप्त हुए हैं और इन सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार का गाया हुआ कोई भी गीत। तो आइए इनकी पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म अनुरोध से इन सभी को ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है गांव नलोई, तहसील सिवानी, मंडी, जिला हिसार से। सज्जन कुमार, राजबाला, नवीन, मंदीप, प्रियंका, सपना, कार्तिक व वेदांश जांगड़ा। हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर, राजस्थान से। सुशील यादव, रेनू, मोहित, कार्तिक, नमिता, शानू और संजू यादव। साथ ही कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। पदमपुर जिला, श्रीगंगानगर, राजस्थान से मेहर, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म हमराज से महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गीत। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनवाते हैं इन्हें ये गाना।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने यही समाप्त होता है। FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर, 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। रात्रि के 10 बजने को है, अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।

0: छाया गीत में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मांगता है तो उसे मिलती है झिड़की। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं इन भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। एक ना एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है और होता है कुछ ऐसा हाल।
1: लो जी बुझ गई बिजली प्यार की, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, जिसे डस गई, जिसे डस गई।

0: बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती हैं अपनी कमियां। 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया, बजाना न आया।

की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम दादा पाप

अफसोस लेकिन ओ जने मन हाय जने मन। कांटे छुरी से खानन आया, कांटे छुरी से खानन आया, दिलबर को अपना बनानन आया, दिलबर को अपना बनानन आया, गानन आया बजानन आया, अरे ये नहीं आया अरे वो नहीं आया, गानन आया बजानन आया।

जब अपनी कमियों और हालातों को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि भाई सारा कसूर है इस दिल का। ये बदमाश न जाने क्या क्या मन में घोलता रहता है और मन इसके इशारे पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, न ये दिल बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहां कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

छाया गीत में आप सुन रहे हैं दिल और दिमाग का सुरताल। लो जी, लाख समझा लो पर मन को तो करनी है अपनी ही। अब देखिए ना, आ पहुंचा है किसी के पीछे पीछे इतनी दूर, और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी तो की जाए। अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए। जाने कौन सा सुर साध रहे हैं और कौन सा राग चल रहा है इनका।

जहाँ दिल और दिमाग अपने सुर और ताल मिला लें, वहाँ समझो इंसान का बंटाधार है। उस पर जो नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा,

बहकी निगाहें माशा अल्लाह माशा अल्लाह, बाकी अदाएं माशा अल्लाह माशा अल्लाह, पलकों की उठती गिरती चिलमन तीर चलाए माशा अल्लाह, दिल का करार हो तुम जाने बहार हो तुम, करने को आए हैं नजारे हम बेचारे प्यार के मारे, और तुम तो तुम हो वाहरे वाहरे लो डर।

चाल तुम्हारी सबसे आला, ला ला ला ला। बात तुम्हारी रस का प्याला, अपना तो हाल कुछ ना पूछो, कैद हुआ है चाहने वाला, जुल्फों के जाल में हम, तेरे ख्याल में हम, उलझे हैं अरमां हमारे, हम बेचारे प्यार के मारे, और तुम तो तुम हो बहरे बहरे, तो डरते डरते

0: दिल और दिमाग की ये तिकड़म कभी कभी काम भी कर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें ना की हों, लेकिन खिड़की से वो भी झांकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहां भी हो रही है वही तिकड़म? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है
1: वो झरोके से जो

0: FM 102.3.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार।
1: तिलक कमोत, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान

0: अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ. APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ. TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defense Minister Rajnath Singh today

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से लोक कल्याणकारी

0: सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है, और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है, तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है, उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के

आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत तो उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो। जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो। निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है, लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसके लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा, उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत

0: में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसऑफर्ड नहीं

हैं, उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया। वो संख्या भी 1,00,00,000

0: क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया, वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा, ये 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी, और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारतम मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया, और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पांख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की

0: मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की। अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं, आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालय

0: विद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के

0: साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है, वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर FM 102 103.6 MHz